0: પ્રસારણ છે આકાશવાણીના દમણ કેન્દ્રનું. શ્રોતા મિત્રો, હવે બરાબર 6 વાગે આપ સાંભળશો દિલ્હી કેન્દ્ર પરથી પ્રસારિત થતા હિન્દી સમાચાર.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં જયા ભારતી. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है. श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही. श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है.
2: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है. एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी. ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं.
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा. म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे. उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा. राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी. गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे. राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे. म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है. म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए

0: चर्चा करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में, IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: .6 मीटर से लेकर 846 किलो हॉर्स पर आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा केन्द्र आप सांभळी रह्या छो। શ્રોતા મિત્રો, સવારના 6:05 થઈ રહી છે. રજૂ કરીએ છીએ ભક્તિ સંગીતનો કાર્યક્રમ અર્ચના.

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: અને હવે સાંભળીએ મોહમ્મદ રફીની ફિલ્મ છે દો બદન।

कुंभकर्ण वध के बाद युद्धभूमि में अब रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद आ उतरा है। अनेक प्रकार के वाण कृपाण तथा अन्य आयुध चारों दिशाओं में छा गए हैं। इधर वानर और रीछ योद्धा पर्वत खंडों और वृक्षों से उस पर प्रहार कर रहे हैं, किंतु इनका उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। मेघनाद ने हनुमान, अंगद, नल, नील, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि महारथियों के शरीर अपने अस्त्रों से छलनी कर दिए। मेघनाद के कुछ वाण सर्पों का रूप धारण कर वानर सेना के महारथियों को बांधते जा रहे हैं। तब श्री राम ने अपनी एक और लीला दिखाने के लिए अपने को भी नागपाश में बंधवा लिया। ये देख देवतागण चिंतातुर हो गए। मेघनाद ने तब त्रिशूल से वयोवृद्ध जांबवान पर आक्रमण किया, लेकिन जांबवान ने वही त्रिशूल अपने हाथों से ग्रहण कर मेघनाद पर प्रहार किया, जिसके आघात से वो मूर्छित होकर गिर पड़ा।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
5: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
4: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
6: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
4: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा

0: ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से

0: हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल SAD को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजीलॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रीवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, डीके शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धरमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसे भारतीय लोकतंत्र

0: जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा, हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: प्रसारण से आकाशवाणी दमण केन्द्र श्रोता मित्रों हवे प्रस्तुत छे कार्यक्रम हास्य रंग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं 14 फेरे इस फिल्म के गाने के साथ।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे राजीव वल्ला, रिया दुगल और राशि हरमलकर की आवाज़ों में 14 फेरे फिल्म का गाना। गीतकार और संगीतकार थे राजीव वल्ला। आइए अब सुना जाए छलांग फिल्म का ये गाना, केयर नहीं करता।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा।

कहानियां अदब में साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए उदित नारायण एक और मोनाली ठाकुर की आवाजों में शबीर अहमद का लिखा और तनिष्क बागची का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है कुली नंबर 1।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनते हैं सोनू निगम और पलक उछाल की आवाजों में बॉर्डर 2 फिल्म का गाना।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 30 मई को गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन सन 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। इससे पहले गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश था। गोवा लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों के अधीन रहा। 19 दिसंबर सन 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। गोवा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ समुद्र तटों, सांस्कृतिक विविधता तथा पर्यटन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। गोवा राज्य की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको सुनवा रहे हैं पुष्पा फिल्म का गाना, जावेद अली की आवाज़, रकीब आलम के बोल, देवी श्री प्रसाद की है तर्ज़।

अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह की आवाज में लापता लेडीज फिल्म का गाना। गीतकार थे दिव्यनिधि शर्मा और संगीतकार राम संपत। आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में।

चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। ये प्यारा सा गाना भी आप सुन रहे थे कदर टू फिल्म से, विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों की आवाज़ें, गीतकार थे सईद कादरी और संगीतकार मिथुन। दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। इसका उद्देश्य आलू के पोषण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा में उसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आलू विश्व की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है, ये हर आय वर्ग के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। भारत सहित अनेक देशों में आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, ये किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। आलू से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं जैसा कि हम लोग रोज खाते भी हैं, इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। आलू की खेती और उससे बनने वाले नाना प्रकार के व्यंजन आजीविका का महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए इस वर्ष की थीम भी शायद यही बात कह रही है। इस वर्ष की थीम है वेयर पोटैटोज ग्रो लाइवलीहुड्स फ्लरिश। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज़ में पिंटू की पप्पी फिल्म का गाना। रमन रघुवंशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा डॉक्टर निट्स ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।

0: सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
0: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए रश्मि रॉकेट फिल्म का गाना। आवाजें हैं भूमि त्रिवेदी और साथियों की, कौशल मुनीर के बोल और तर्ज अमित त्रिवेदी की।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए एआर रहमान और हीरल विरदिया की आवाजों में महबूब का लिखा और एआर रहमान का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम हीरोपंती 2।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश देहाती डिस्को फिल्म से दिव्या कुमार की आवाज़ प्रणव वत्स ने लिखा इसे और संगीतबद्ध किया है गणेश आचार्य ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जो सिनेमा के पर्दे पर बतौर विलेन भी नजर आए।
1: मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं? हवेली पे आ जाना, कल यहां पे हजारों लोग होंगे, पूरी फोर्स बदलवा के रख दूंगा मैं, हाहाकार मचा दूंगा।
2: क्या
1: हाहाकार?
2: तेरे बाप का राजा क्या?
3: क्वाइट विक्रम, मामा ठाकुर से गलती हुई है।
2: क्या बात कर रहे सर?
1: ये बात मैं दिल्ली तक लेकर जाऊंगा।
2: चलिए अभी दिल्ली।
0: बतौर चरित्र अभिनेता भी, बतौर कॉमेडियन भी।
4: ए खालिद भाई, मेरा नंबर है।
5: अरे यार, तू दोस्त है अपन का, मैं गया तू गई की बात है?
4: ना ना, दोस्त है तो घर पे आ।
5: क्या बात करता है, सिर्फ 50 रुपया? ये तो बहुत कम है यार, तू टेंशन मत ले यार, कोयला ले और 50 के आगे एक जीरो लिख डाल, 500 हो जाएगा, बात खत्म।
2: क्या बात सु?
5: खालिद भाई मेरी बीवी क्या? अरे सॉरी सॉरी, ये तो बहुत बुरा हुआ, सॉरी।
6: एक बार ये लिखने वाला खालिद भाई मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसकी डेथ सर्टिफिकेट लिख डालूंगा, देखना।
5: मेरे को मालूम है किसने लिखा है।
0: और उन्होंने रंगमंच पर भी अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं जाने माने अभिनेता परेश रावल को।

परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार जुहू में रहता था और उनका एडमिशन वहां जुहू स्कूल में करवा दिया गया। जब वो 11-12 साल के थे तो स्कूल के मंच पर अभिनय करने लगे और जुहू स्कूल की प्रिंसिपल ने उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने नन्हे परेश से कहा कि वो अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मंच पर वो अपनी अभिनय प्रतिभा की जौहर दिखाना जारी रख सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई इसी तरह से चलती रही। रंगमंच और पढ़ाई को किसी तरह से परेश रावल ने बैलेंस किया और फिर मुंबई के नरसी मुंजी कॉलेज में पढ़ने लगे। यहां के प्रिंसिपल ने भी परेश रावल की अभिनय प्रतिभा को समझा और उनके साथ सहयोग किया, यानी उन्हें कॉलेज के लेक्चर्स छोड़ देने की अनुमति मिल गई क्योंकि वो अपने कॉलेज के लिए थिएटर किया करते थे। परेश रावल ने अपने कॉलेज को कई प्रतियोगिताओं में जिताया। उसके बाद 1973 आया जबकि परेश रावल ने पेशेवर थिएटर ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल थिएटर के बैनर तले उन्होंने अपना पहला प्ले किया जिसका नाम था वेन छे मौत। ये वो दिन थे जब परेश फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे। वो थिएटर की दुनिया में खुश थे क्योंकि यहां उन्हें अपने मन मुताबिक एक्टिंग करने मिल रही थी। लेकिन फिर उनकी नजर पड़ी नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के काम पर और तब उन्हें यह एहसास हुआ कि थिएटर के अलावा फिल्मों में भी अभिनय की दुनिया का विस्तार है। और तकरीबन 4-5 साल बाद सन 1978 से 1980 के बीच परेश रावल ने यह फैसला किया कि उन्हें फिल्मों की दुनिया में जाना है। फिल्मी दुनिया में संघर्ष करना शुरू किया। श्याम बेनेगल

गोविंद निहलानी, कुमार साहनी जैसे कला फिल्मों के निर्देशकों से उन्होंने समय समय पर मुलाकात की और बताया कि वो फिल्मों में काम करने के इच्छुक हैं और फिलहाल थिएटर में सक्रिय हैं, लेकिन परेश रावल का काम नहीं बना।

अब परेश को ये समझ में आ गया था कि फिल्मों में उनके लिए फिलहाल तो जगह नहीं है। वो थिएटर में अपना पूरा ध्यान लगा रहे थे। एक दिन की बात है, मुंबई के मशहूर पृथ्वी थिएटर में परेश रावल के किसी नाटक का शो चल रहा था। जाने माने प्रोड्यूसर करीम मुरानी उस शो को देखने आए और उन्होंने नेपथ्य में जाकर परेश रावल से भी बात की और बाद में निर्देशक राहुल रवेल से परेश के नाम की सिफारिश की। राहुल रवेल उन दिनों फिल्म बना रहे थे अर्जुन, और सन 1985 में परेश रावल को फिल्म अर्जुन के लिए साइन कर लिया गया। शूटिंग का पहला दिन था, पहली बार परेश रावल कैमरे का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपना टेक इतनी अच्छी तरह से दिया कि निर्देशक राहुल रवेल ने कहा, परेश जी अब आप मेरी हर फिल्म में काम करेंगे। और इस तरह से परेश रावल थिएटर की दुनिया से होते हुए फिल्मों में चले आए। धीरे धीरे परेश रावल ने फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने शुरू किए, लेकिन इन दिनों वो नाटक करते चले जा रहे थे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सन 1976-77 का जमाना था। परेश रावल एक गुजराती नाटक कर रहे थे ठोकर, जो पीटर श्वाफर्स के नाटक इक्वल पर आधारित था, और इन दिनों उनकी मुलाकात हुई मॉडल और अभिनेत्री स्वरूप संपत से। परेश रावल को स्वरूप संपत से प्यार हो गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि परेश रावल का ताल्लुक एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार से था और स्वरूप संपत एक अंग्रेजीदा परिवार से आई खूबसूरत मॉडल, मिस इंडिया और एक बेहद खूबसूरत नाजुक शख्सियत थी। दोनों का कहीं कोई मेल नहीं था। परेश कहते हैं कि ये उनके लिए सपनों जैसे दिन थे। आखिरकार एक दिन परेश रावल और स्वरूप संपत ने शादी कर ली।

0: परेश रावल कहते हैं कि फिल्मों में अभिनय के लिए अगर हिंदुस्तानी सिनेमा के कोई आदर्श हैं उनके लिए तो वो हैं बलराज साहनी, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी। परेश रावल का ये भी मानना है कि अभिनय उन्हें बड़ा ही दिलचस्प करियर लगता है क्योंकि एक्टिंग की दुनिया में एक जीवन में कई जीवन जीने का मौका मिलता है। अर्जुन के बाद परेश रावल को फिल्मी दुनिया में अपना नाम अच्छी तरह से कमाने का मौका मिला तो वो थी महेश भट्ट की सन 1986 में आई फिल्म नाम। इसमें भी परेश रावल ने विलेन का रोल किया था। इसके बाद तो परेश रावल ने कई फिल्मों में तरह तरह के रोल किए। कभी वो बतौर विलेन नजर आए, कभी चरित्र अभिनेता के तौर पर, और कभी आपको हंसाते हुए नजर आए, कॉमेडी करते हुए।
1: विश्वजीत, हाँ बोल, ये इसमें कौन सी साड़ी पहननी है, है?
2: पता नहीं इनकी नाम भूलने की बीमारी कब जाएगी। इतनी सारी साड़ियाँ लेकर क्या कर रहे हो?
1: अरे भाई, कल तुमने जो 15-20 साड़ी खरीदी थी ना, है ना, तो मैं ये पूछने आया हूँ कि इसमें कौन सी साड़ी को इस्त्री मारनी है। डार्लिंग विश्वजीत,
2: परमजीत।
1: कौन परमजीत?
2: मेरा नाम परमजीत है जिससे तुमने शादी की है।
1: अभी अभी सुना बेटा, तुम्हारी बात को बोलो ना। अच्छा क्या बात, इसका नाम भी भूल गया, परिमल।
3: डैडी जी, मेरा नाम परिमल नहीं, अनमोल है।
1: ए यार, तेरे को क्या हो गया? चुनीलाल?
2: मणिलाल।
1: कौन मणिलाल?
2: तोड़ा नाम मणिलाल है, मणिलाल पटेल।
1: ये नाम मैंने कब रखा?
2: बचपन से।
1: बचपन से?
2: हाँ?
1: बचपन से मेरा ये नाम है, और मुझे अभी बताती हो तुम? ले, अभी मैं याद रखूंगा, मेरा नाम मेथी लाल है बस।
2: ओ जीसस।
1: जीसस? अभी तुमने बोला ना मेरा नाम मेथी लाल है, अभी जीसस।
2: गेट आउट, गेट आउट।
0: परेश रावल की सबसे मशहूर कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी। परेश मानते हैं कि हेरा फेरी की सफलता का सारा श्रेय जाता है इस फिल्म के लेखक नीरज वोरा को, जिन्होंने कॉमेडी को बड़ी अच्छी तरह से निभाया था।
4: बाबू भैया, आप गांव में घर है ना आपके?
5: नहीं है। क्यों?
4: नहीं, क्योंकि अगर कल शाम ने आपको घर से निकाल दिया
5: है?
4: तो मेरा तो ठीक है, आप इस उम्र में कहां कुत्ते की तरह भटकोगे।
6: देख राजू, जबान को लगाम दे, समझा?
4: देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका।
5: सच बात बोलता तो मेरे को कोरा कागज पे अपना दस्तखत दे दे रे बाबा।
6: आपको मुझ पे भरोसा नहीं?
4: ये इसके दिल में खोट है।
6: तेरे दिल में खोट है? मैं तो किराया देके रहता हूँ, तू तो मुफ्त में रहता।
4: हाँ तो मुफ्त में रहता तो क्या हुआ, मैं दस्तखत करने को तैयार हूँ।
6: तो मैं भी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ।
4: हाँ तो करना तू।
6: हाँ तो तू भी करना।
4: हाँ तो कागज लेके आना तू।
6: तू कागज ले।
4: अरे मैं क्यों लेके आऊं?
6: मैं क्यों?
4: तुम दो मिनट, दोनों बाहर जाओ, पेपर लेके आओ, जाओ।
5: इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले।
4: हेलो, पेपर पे साइन किया है, इसने अभी तक नहीं किया, खोट है इसके दिल में।

0: आपको गाना नहीं सुना दे रहा?
1: कौन सा गाना
0: साफ सुनाई दे रहा है?
2: ये गुरु घंटाल आदमी है, साइन नहीं करने वाला। मैं कहता हूँ उसका बोरिया पिस्तौल उठाओ, बाहर फेंक दो उसको।
3: ये तो साइन कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, गाने गाने लगाए ले, साइन कर रहे हैं गाने।
4: हेलो
5: हेलो देवी प्रसाद।
3: नहीं देवी प्रसाद नहीं है, तुम क्या करोगे?
5: सर वो मेरी मछली का क्या हुआ?
3: वो तो मैं खा गया।
5: खा गए?
3: हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया।
6: बतौर विलेन परेश रावल अपनी दो फिल्मों को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। एक है फिल्म डकैत और दूसरी फिल्म कब्जा। आज परेश रावल 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं और एक कलाकार के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी कुछ प्रतिनिधि फिल्मों का चुनाव करना। लेकिन अपने एक इंटरव्यू में परेश रावल ने अपनी पसंदीदा फिल्मों के बारे में बताया है। उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है केतन मेहता की फिल्म सरदार, जिसमें उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाया था। परेश रावल से जब पूछा गया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने तैयारी कैसे की, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो वो मिल नहीं सकते थे, वो इस दुनिया में नहीं है, तो परेश का जवाब था कि उन्होंने असंख्य तस्वीरें उनकी देखी और उन तस्वीरों के जरिए ये अंदाजा लगाया कि सरदार पटेल किस तरह से बोलते होंगे, किस तरह से चलते होंगे और उनका स्वभाव किस तरह का होगा। इसके अलावा उन्होंने इस अभिनय के लिए बहुत सारी रिसर्च भी की।
7: फिर वही बात, हम यहाँ पे आजादी की बात करने आए हैं, बंटवारे की नहीं। और अगर बंटवारा होना ही है तो उसका निर्णय एक आजाद देश के आजाद लोग करेंगे, अंग्रेज सरकार नहीं।
6: पूजा भट्टी की फिल्म तमन्ना को वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानते हैं, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने एक वृहन्नला का, एक हिजड़े का किरदार निभाया था। परेश ये कहते हैं कि ऐसे किरदार भी मानवीय होते हैं, उनका अपना संघर्ष, उनकी अपनी तकलीफें होती हैं और इस फिल्म के जरिए उन्होंने इस तरह के चरित्र की तकलीफों को सिनेमा के पर्दे पर जीवंत कर दिया था।

0: हीरा फेरी फिर हीरा फेरी, आंखें आवारा पागल दीवाना, गरम मसाला, दीवाने हुए पागल, मालामाल वीकली, गोलमाल, हलचल, छुप छुप के, भागम भाग, शंकर दादा, भूल भुलैया, वेलकम, मेरे बाप पहले आप, दे दनादन और हंगामा जैसी ना जाने कितनी फिल्में हैं जिनके जरिए परेश रावल ने आपको हंसाया है।
1: और नाचते नाचते तुम्हारे पांव कहां पड़ रहे थे और घुंघरू किस ताल में बज रहे थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। अब जब तुम्हारी चोरी सामने आ गई है तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा करो, लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाने का बहाना बना रही हो।
2: अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे?
1: अरे नौटंकी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या बेवकूफ समझ रखा है मुझे? इतना याद रखना, हम सब समझ गया हूँ और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और ये जो महंगी महंगी साड़ियाँ जो तुम्हारी इस गोल घूमर जैसे बदन को पहनाई है उसका क्या? और दिन रात जो तरह तरह के खाने जो तुमने चाट चाट के रसोई घर में खाए हैं उसका पैसा कौन देगा?
0: सन 1994 में परेश रावल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म वो छोकरी के लिए, और फिल्म सर के लिए उन्होंने जीता फिल्म फेयर पुरस्कार।
3: हम लोगों को इतना खुश देखकर आपको अजीब लग रहा है ना, मैं बताता हूँ। बात यह है कि जब यह छोटी थी ना तो खुश रहती थी, खेलती रहती थी हाँ, लेकिन जिस दिन से इसकी माँ गई है ना, चुप हो गई है। घर एकदम शमशान हो गया था, और इतने साल के बाद आपने सर पे हाथ रख दिया, मेरे घर में जान आ गई है।
0: सन 2001 में फिल्म हेरा फेरी के लिए परेश रावल चुने गए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन फिल्म फेयर की।

0: कुर्सी। सन 2003 में आवारा पागल दीवाना फिल्म के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता।
1: ये मेरा गला बैठने को आया है? तू क्या कान दुकान पे बेच के आया है? साला बेरा, इधर कचरा नहीं डालने का। ये तो तू नया है ना, इसके लिए मैं प्यार से बात करता हूँ। ये गुलाब वाले, तेरा नाम क्या है?
2: लिसन जेंटलमैन,
1: ये साला कौन सा नाम है? समझ में नहीं आता, इधर कचरा नहीं डालने का।
2: I'm sorry.
1: अबे सॉरी क्या इंडिया समझा है? गुना करो, सॉरी बोलो,
3: क्या हुआ बड़ी जी?
1: अब ये साला घन चक्कर को मैं एक कलाक से समझा भी नहीं थकी गया। इधर कचरा नहीं डालने का, इसको बोल इधर से कचरा उठावे वरना।
0: परेश रावल की एक महत्वपूर्ण फिल्म है अंदाज अपना अपना, जिसमें वो सलमान खान और आमिर खान के साथ नजर आए थे। परेश रावल रंगमंच पर भी सक्रिय हैं। उनकी कंपनी टेलीविजन के लिए सीरियल्स बनाती है और उन्होंने एक फिल्म का निर्माण भी किया है, ओ माई गॉड। ये फिल्म गुजराती के एक प्रसिद्ध नाटक पर आधारित थी।
4: किसे भेजनी है नोटिस?
2: भगवान को।
4: मिस्टर भगवान? सरनेम?
2: पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है।
4: अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। अरे ये नोटिस किसे भेजूं?
2: हाँ, लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं।
4: अच्छा है?

0: सन 2014 में भारत सरकार ने परेश रावल को पद्मश्री से सम्मानित किया था। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता परेश रावल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: हमारी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: स्वस्थ भारत का सपना अब होगा साकार, हर परिवार को मिलेगा इलाज का अधिकार।
2: आयुष्मान भारत योजना, सबका साथ सबका विकास, हर घर में खुशहाली आए, स्वास्थ्य बने विश्वास।
1: अब चिंता छोड़िए इलाज की, सरकार है आपके साथ। मुफ्त इलाज की सुविधा पाएं, बस कराएं पंजीकरण आज।
2: हर परिवार को स्वास्थ्य का अधिकार, आयुष्मान भारत सबका आधार।
1: जल्दी करें, अंतिम तिथि 31 मई 2026। अधिक जानकारी के लिए डायल करें 104।
2: आयुष्मान भारत, स्वस्थ जीवन सुरक्षित भविष्य।

0: अहता कलाकार हेमांगिनी देसाई।
1: हेलो
2: राजेश जी, हूँ पोलिस स्टेशन थी बोलू छू।
1: फरी थी?
2: तमे डिजिटल अरेस्ट मा छो, बीजा रूम मा जाओ। एकला तमारा पार्सल मा थी ड्रग्स मळ्या छे, लांबा जशो।
1: 10 लाख आपी दो, बची जशो।
3: सर आटला क्या थी?
1: एक लिंक मोकली छे, हमणा प्रोसेसिंग माटे 2 लाख मोकलो, बाकी ना पछी।
3: सर 2 लाख?
4: शू थयो पप्पा?
3: बेटा कही रिया छे के मारा पार्सल मा ड्रग्स मळ्या छे।
2: अरे
3: कापी ना क्यों?
4: पैनिक नहीं करो पप्पा, डिजिटल अरेस्ट जेवू काइंच नथी होतू, आ बधा फ्रॉड छे।
3: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, आरबीआई वगैरह ना नाम थी आवनारा साइबर अपराधियों ना फोन के वीडियो कॉल थी सावधान रहो। तेमने कोई पैसा ना मोकलो अने तरत पुलिस मा रिपोर्ट करो। जो तमे समझदारी नहीं बतावो
5: तो पैसा गुमावशो।
6: आरबीआई कहे छे,
4: जानकार बनो, सतर्क रहो।
7: दादरा नगर हवेली और दमन दीव के विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर।
8: दमन स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में वर्ष 2026-27 के लिए डिग्री इंजीनियरिंग में प्रवेश शुरू।
7: डिग्री इंजीनियरिंग में बीई, बीटेक, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और बायोमेडिकल में प्रवेश ले सकते हैं।
8: प्रवेश की अंतिम दिनांक 13 जून 2026। ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट है www.dhtednhdd.in।
7: हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन विभाग दानह और दमन दीव द्वारा जारी।
9: आप कस्टमर केयर क्या छे? हाँ मैडम
10: जी,
9: आ केवाईसी अपडेट माटे मने वारंवार मैसेज केम आवी रह्यो छे?
10: कारण के बैंकिंग सेवाओ माटे निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करावो जोईए।
9: पण ए केवी रीते थशे?
10: जो ओळखाण के सरनामा मा कोई बदलाव न होय तो तमारी बैंक के एटीएम के बिजनेस कोरेस्पोंडेंट एटले के बीसी पासे जाओ, अथवा बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल के मोबाइल नंबर के मोबाइल बैंकिंग ऐप के पत्र द्वारा तेनी स्व घोषणा करो।
9: अच्छा, अने जो कोई बदलाव होय
10: तो तमे ओळखाण के सरनामा नु सौथी नवू प्रमाण आपीने केवाईसी अपडेट करावी शको छो।
9: बस
10: बस
9: समझी गयो।
10: तमारू केवाईसी अपडेट करावा माटे तमारा नजीक ना ग्राम पंचायत कैंप मा के बैंक नी शाखा मा जाओ।
6: आरबीआई कहे छे,
4: जानकार बनो, सतर्क रहो।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है मन चित्रपट संगीत। अब आपको सुनवाते हैं एग्रीमेंट फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, गुलशन बावरा के बोल, संगीत है बप्पी लाहिरी का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत को लिखा साहिल लुधियानवी ने, संगीत तैयार किया खय्याम ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: दोस्तों नमस्कार, आज के मैटिनी शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व तंबाकू दिवस पर आइए सुनते हैं BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के मैटिनी शो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं 31 मई ये जो दिन है, इस दिन मनाया जाता है विश्व तंबाकू विरोधी दिवस। और तंबाकू विरोध क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए,

0: सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है बीईएसटी के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल जी को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू।
0: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो लत है तंबाकू की, ये जो नशा होता है, ये लत के अलावा भी तंबाकू का कोई इस्तेमाल होता है, वो किस तरह से होता है?
1: जी, एक्चुअली ह्यूमन ने तंबाकू का जो सेवन करने से पहले उसको कोई अलग तरीके से यूज करते थे। जैसे कि हमारा देश खेती प्रधान देश है
0: जी, जी।
1: तो वहाँ पे खेती हमारा पूरा डिपेंडेंसी रहता है। तो खेती को जो दो तीन चीजें से जो खतरा है, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स या बड़े जानवर वगैरह, इनसे खतरा रहता था, तो उनके खेती के जो बॉर्डर पे तंबाकू के प्लांट्स लगाए जाते थे।
0: अच्छा।
1: और उनकी वो स्मेल से जो वाइल्ड एनिमल्स वो दूर चले जाते थे। दूसरा था कि खेती को दूसरा जो प्रॉब्लम था वो चूहे से, तो चूहे खेती खराब कर देते थे। तो अभी आज भी की तारीख में भी जो तंबाकू के जो लीव्स रहते हैं
0: जी जी,
1: वो जो बड़े रहते थे वो सूखने के बाद उसको गर्म करके,
0: अच्छा गर्म करके
1: उसको आग लगा के उसको चूहे के जो अंडरग्राउंड जो उनके
0: बिल होते हैं
1: उसमें डाल देते, चूहे भाग जाते या मर जाते थे। आज की तारीख में भी हमारे जो गाड़ी
0: में, ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है,
1: इवन सिटी में भी,
0: सिटी में
1: जो ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन चूहे गाड़ी के जो
0: वायर कुतर जाते हैं,
1: तो उसको रोकने के लिए भी तंबाकू डाल देते थे उससे। तो उसके अलावा जो तंबाकू का जो पान रहते हैं उसको सूखने के बाद उसका पाउडर करते, उसको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड करके भी यूज होता था। जैसे इंसेक्ट्स है जो खेत को या धान को खराब न कर दे। सो ये कुछ तरीके थे जो अदर देन सेवन हम इंसान इसको यूज करते थे। तो ये मुझे यहाँ पे कहना है कि तंबाकू से किसी को भी सेफ नहीं है, सब खतरे में है। अगर वो जीव छोटा है तो जल्दी मरेगा, अगर बड़ा है स्लोली स्लोली लेकिन मरेगा जरूर। तो तंबाकू के लिए कहा जाता है कि तंबाकू के जो सेवन करने वाले में से 50% लोग को तंबाकू मार ही डालता है। तो ये मैं श्रोताओं को मैं चाहता हूँ कि बात ध्यान से सुने और अपने दिमाग में उसको हमेशा के लिए स्थापित कर दे।
0: जी जी जी, ये तो बस एक पेस्टिसाइड की तरह इसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो केवल उतनी बात अच्छी है तंबाकू की, ये कह सकते हैं बस,
1: बाकी
0: कुछ नहीं। चलिए, एक और आपसे बात जाननी थी कि आप बीएसटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और 2014 से आपने एक मुहिम चलाई थी तंबाकू विरोधी, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लाइन में जितने लोग काम करते हैं, खासतौर से जो ड्राइवर्स होते हैं बस के और ट्रकों के ड्राइवर्स होते हैं, इन लोगों में ज्यादा लत होती है तंबाकू।
1: yes, yes.
0: तो आपने जो मुहिम चलाई है इसके विरोध में, तो उसके 12 साल हो गए, क्या फायदे आपको नजर आए?
1: या तो मैं श्रोताओं को बताऊं कि तंबाकू में 7000 अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रहते हैं।
0: ओ,
1: रसायन, 7000
0: रसायन।
1: जब कोई भी उसको कंज्यूम करता है तो वो शरीर में जाके अलग अलग बीमारियां करते हैं, जैसे कि सिंपल हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक आ सकता है, देन लकवा मार सकता है, अपने जो बोन्स है वो वीक हो जाते हैं, और तंबाकू खाने वाले लोगों को बैक पेन या शोल्डर पेन या फ्रैक्चर के भी प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा तंबाकू की वजह से टीबी शरीर की बीमारियां होती है, और सबसे डेंजर जैसे कि कैंसर, पर्टिकुलरली मुंह का कैंसर। तो ये सब बीमारी की वजह से हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज कर्मचारी उसकी लत के वजह से पीड़ित थे, और उसके वजह से हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन भी कम हो रहा था, बिकॉज बीमारी की वजह से वो काम पे नहीं आ सकते थे। तो हमने ये सब चीज को देख के हमने 2014 में तंबाकू मुक्त बेस्ट ये अभियान शुरू किया,
0: और तंबाकू मुक्त बेस्ट, अच्छा,
1: और आज तक उसको हमने कंटिन्यू किया है। तो 12 साल के आज ये अभियान को हो गए, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये 12 साल में 5000 हमारे कर्मचारी ने तंबाकू की व्यसन परमानेंटली छोड़ दिया है।
0: वाह।
1: उसके अलावा एक जो सर्वे है उसको हम गेट्स बोलते हैं, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे,
0: अच्छा,
1: उसके मुताबिक कि सरकार अगर 100 रुपीज टैक्स लेती है तंबाकू के ऊपर, तो सामने 816 रुपया का हमें अतिरिक्त भार हमें भुगतना पड़ता है। वो जो भार है मेनली तंबाकू वजह से जो बीमारियां होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरा जो बीमारी की वजह से लोग काम पे नहीं जाते या प्रोडक्टिविटी लॉस के हिसाब से ये नुकसान। तो 12 साल में हमने देखा है कि बीमारियां कम हो गई, उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा कम हो गया, बीमारियां कम हो गई, इसलिए सिकनेस एब्सेंटिज्म भी हमारे कम हो गया।

0: और इसके वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और रेवेन्यू भी बढ़ गया, और साथ साथ में बीमारियां कम हुई है, तो जो उसकी वजह से मॉर्टेलिटी थी
1: जी,
0: जो डेथ, वो भी हमारे इधर कम हो गई है, कैंसर के प्रमाण हमारे उधर कम हो गए, तो लोगों में एक अच्छी भावनाएं तैयार हुई है तंबाकू के विरुद्ध में। तो ये बीमारियां कम होने से ये जो लोग ठीक हो रहे हैं या जो बीमार कम पड़ रहे
1: जी,
0: तो ये नोटिफाई किया गया और हमारी जो अभियान को नेशनली और इंटरनेशनल भी रिकॉग्निशन मिला है, एक्नॉलेज किया गया, अवार्ड भी मिला है।
1: क्या बात है।
0: तो ये तो मैं चाहता हूँ कि पूरी भारत में ऐसे अभियान अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में
1: चलाए जाए
0: जो लोग अच्छे हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े हमारी।
1: से आप सभी, आप और आपकी पूरी टीम जो ये मुहिम चला रही है, अभियान चला रहे हैं, आप इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। पुरस्कार भी आपको मिल चुका है और काफी उपलब्धियां रही इस अभियान के। बेसिक एक बहुत ही सवाल ये है कि लोग क्यों खाते हैं तंबाकू, क्या होता होगा, ये नशे की शुरुआत कैसे होती है, और वो खाने के बाद क्या उन्हें महसूस होता होगा कि फिर वो बार बार उसे खाने लग जाते हैं।
0: बेसिकली वो तंबाकू खुद से तो कोई खाता नहीं है
1: जी,
0: मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि पीयर प्रेशर, स्कूल कॉलेज के जमाने से दोस्त खा रहा है,
1: अच्छा
0: कलीग खा रहे, ले लेना,
1: अच्छा
0: ले लेना, तो छोटी छोटी शुरुआत छोटे से होती है। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक रीजन ऐसा है, जब तंबाकू का सेवन किया जाता है
1: जी,
0: आइदर स्मोक से या स्मोकलेस से, तो अपने ब्रेन में एक केमिकल्स जो है
1: जी,
0: वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। वो केमिकल का नाम है डोपामिन।
1: ओके।
0: और डोपामिन जो कहते हैं इसको हैप्पीनेस हार्मोन भी बोलते हैं
1: जी,
0: वो जब डोपामिन का लेवल ब्रेन में बढ़ता है तो लोग स्ट्रेस फील करते हैं, उसको खुशी महसूस करते हैं, और सिंपल भाषा में बोले तो किक आती है उनको।
1: ओ।
0: और किक के वजह से लोग, ये पर्टिकुलर ड्राइवर्स, ये किक के वजह से ये तंबाकू का सेवन करते हैं। तो ये जो देन शुरुआत में बहुत कम मात्रा में तंबाकू की सेवन, बहुत कम मात्रा में डोपामिन लेवल बढ़ता है,
1: अच्छा।
0: लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे आगे ये लत बढ़ती है तब वो डोपामिन लेवल बढ़ता है, तब तंबाकू का लेवल कंजम्पशन की मात्रा भी बढ़ जाती है,
1: अच्छा।
0: उसको कहते हैं कि निकोटीन रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर्स, वो जो है वो रेजिस्ट हो जाते हैं, तब थोड़ा भी डोपामिन बढ़ने के लिए ज्यादा मात्रा तंबाकू की कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है। तो ये विशेष साइकिल तैयार होती है,
1: यानी पहले एक ग्राम खाने पर भी जो खुशी मिलती थी वो 10 ग्राम खाने के बाद भी नहीं मिलती है।
0: आगे
1: फिर वो मात्रा बढ़ती जाती
0: है बढ़ते बाद, इसलिए वो उसकी लत लगती जाती है और पेशेंट उसके पूरी अधीन हो जाता है, उसकी पूरी डिपेंडेंस तैयार हो जाती है और देन वो बीमारियां शुरू होती है।
1: अच्छा, फिर वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक बार लत लग जाए तो फिर वो कौन कौन सी बीमारियां, बहुत लंबी लिस्ट है।
0: यस, बहुत बड़ी लिस्ट है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि कैंसर ठीक है, होता है, 100% होता है वो, लेकिन उसको टाइम लगता है। लेकिन उससे पहले जो होते हैं कि मैंने पहले बताया कि पहला तो जब तंबाकू खाते हैं तो पहला हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और कोई नोटिस नहीं करता है। हार्ट बीट बढ़ जाती है, देन ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, देन ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है देन डेफिनेटली वो हार्ट पे उसकी असर होने लगती है, तो देन हार्ट अटैक आने के रिस्क बढ़ जाती है। देन जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पैरालिसिस, उसके भी जब तंबाकू कंज्यूम करते हैं तो हमारे जो खाने की जो पचन शक्ति है वो पुअर हो जाती है, और उसके वजह से लोग उनको अपचन समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की दिक्कत होती है। जब ये अपचन होता है तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट विटामिन्स या कैल्शियम मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होने चाहिए वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और उसके वजह से पर्टिकुलरली कैल्शियम जो बोलते हैं।
1: डॉक्टर साहब आप तो बता रहे हैं तंबाकू खाने का ये असर है,
0: ये
1: साइड देखा गया है कि वो जब तक वो तंबाकू नहीं खा लेते सुबह सुबह चाय पीने के बाद या सिगरेट नहीं पी लेते तब तक उन्हें हाजत नहीं आती और वो टॉयलेट नहीं जाते।
0: वो एक मिथ है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अपचन होता है तो कैल्शियम, सबसे बड़ा कैल्शियम का प्रॉब्लम शुरू होता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, इसलिए वजह से बेसिकली हड्डियां और मसल्स में कैल्शियम की बहुत नीड रहती है, जरूरत रहती है। तो ये मसल्स एंड हड्डियां भी वीक हो जाती है और ऐसे
1: बोन डेंसिटी कम हो जाती
0: है, बोन डेंसिटी कम हो जाए, तो ऐसे जो तंबाकू जो खाने वाले लोगों में बैक पेन, मसल्स पेन और फ्रैक्चर की मात्रा भी ज्यादा रहती है। देन तंबाकू खाने की वजह से हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यूनिटी बोलते हैं
1: जी,
0: वो कम हो जाती है, और उससे अलावा लोग ड्यूटी पे रहते हैं तो लंच या डिनर या स्किप करने के लिए भी लोग तंबाकू खाते हैं।
1: ओ
0: हो, तो ये सब की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसके वजह से जैसे कि जो क्षय रोग या टीबी शरीर की बीमारी का उनको ज्यादा खतरा रहता है
1: जी।
0: और ऑफकोर्स लास्ट बट नॉट द एंड या नॉट द लीस्ट, ये कैंसर की बीमारी
1: जी, जी।
0: अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि तंबाकू को सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर होता है और भारत देश पूरे विश्व में
1: जी।

0: तंबाकू की वजह से होने वाले मुंह
1: कैंसर के
0: के कैंसर के प्रथम नंबर पे आता है।
1: ओहो।
0: और ये कलेक्टिवली जो भी मैंने बीमारियां बोली उसके वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोग की मृत्यु होती है। तो ये श्रोताओं को जानना बहुत जरूरी है।
1: ये बहुत दर्दनाक
0: चीज है,
1: मगर तो सत्य है।
0: लेकिन ये सत्य है
1: जी,
0: और
1: जी,
0: ये
1: जी।
0: मैं नहीं बोल रहा हूँ,
1: हाँ।
0: ये ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के रिपोर्ट में लिखा है।
1: जी, जी, जी। हमने ये भी सुना है डॉक्टर साहब कि तंबाकू खाने से डायबिटीज होता है, मधुमेह।
0: यस, इस पे थोड़ा बाहर दूंगा।
1: जी जी।
0: कि पहला तो हम समझ लेते कि पूरी दुनिया भर में,
1: हाँ,
0: दो देश में सबसे ज्यादा तंबाकू प्रोडक्शन होता है, उसका कंज्यूम भी होता है।
1: हाँ।
0: वो है, एक है चीन और दूसरा नंबर पे हमारा भारत देश है।
1: अच्छा।
0: और दोनों देश में ही सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है, मधुमेह के पेशेंट है।
1: ओ, अच्छा।
0: तो ये इनडायरेक्टली कोरिलेशन है।
1: हाँ,
0: कि तंबाकू वजह से डायबिटीज हो सकती है। आज की तारीख में देखें तो पूरी दुनिया में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में पाए जाते हैं। पहले दो साल पहले चाइना में था, अभी भारत में हो गया। और दोनों में ज्यादा ही कंजम्पशन होता है। जैसे मैंने बताया कि तंबाकू में 7,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स रहते हैं। वो कंज्यूम करने के बाद हमारा जो डायबिटीज का जो मेन जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, इंसुलिन।
1: जी, जी।
0: ये जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को और इंसुलिन के फंक्शन को ये तंबाकू ऑल्टर करता है।
1: अच्छा।
0: और बहुत सारे रीजंस है, और इसके वजह से शुगर कंट्रोल मैकेनिज्म हमारी बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है।
1: अच्छा।
0: अगर आप WHO की साइट पे जाओगे और डायबिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मांगोगे तो उसके जो पांच प्रमुख कारण है उसमें पांचवा कारण है तंबाकू का व्यसन।
1: अच्छा।
0: तो लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि तंबाकू वजह डायबिटीज भी होती है।
1: मगर जरूरी नहीं कि डायबिटीज है तो उसको तंबाकू की लत होगी।
0: नॉट नेसेसरी, बट तंबाकू खाने वालों को रिस्क ज्यादा रहती है,
1: इसकी रिस्क है, तो डायबिटीज हो सकता है।
0: यस, हो सकता है। और वो डायबिटीज मतलब बहुत कड़वी बीमारी है।
1: जी जी जी। तंबाकू अगर कोई किसी को अगर उसका नशा है, लत है और वो छोड़ना चाहे तो निश्चित रूप से बहुत उसके फायदे उसको मिलेंगे।
0: यस,
1: मगर उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी होते होंगे।
0: यस,
1: तो हमें दोनों बातें बताइए।
0: yeah.
1: छोड़ने के बाद में विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं?
0: Yes.
1: और एक बार वो छोड़ दे, निश्चय कर ले, अपना निर्धार पक्का हो जाए उसका कि छोड़ना है, तो उसके क्या क्या फायदे उसे होने वाले?
0: तो पहला हम उसके फायदे के बारे में बोलेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जब तंबाकू अगर सपोज वो सिर्फ हर एक घंटे में खाता है
1: जी,
0: या किसी बहुत बार तो वो जब नींद से सुबह में उठता है तो अब कितने समय में उसको तंबाकू की जरूरत पड़ती है, वो एक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फैक्टर है।
1: अच्छा।
0: उसकी उसकी लत के बारे में हमें मालूम पड़ता
1: है
0: कि उठने के बाद कितने समय के बाद उसको तंबाकू खाने की जरूरत पड़ती है। तो जब तंबाकू उस समय पे नहीं खाया तो पहला तो उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहती है।
1: अच्छा।
0: वो बहुत जरूरी है हार्ट हेल्थ के लिए,
1: बेशक
0: हृदय की स्वास्थ्य के लिए उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। तो वो नॉर्मल रहने लगती है। देन उसके बाद ब्लड प्रेशर जो, इसलिए अब हम जब भी एज अ डॉक्टर हम जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं,
1: हाँ,
0: तब उसको पूछते हैं अगर तंबाकू आप एडिक्ट हो तो आधे घंटे के बाद ही हम आपका बीपी चेक करेगा अगर आपने, क्योंकि हमें मालूम है वो ज्यादा ही दिखाने वाला है।
1: अच्छा।
0: तो इसलिए तो इनडायरेक्टली जब तंबाकू का लत या एडिक्शन छोड़ते हो,
1: हाँ,
0: तो बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है।
1: अरे वाह।
0: तो ये दोनों, हार्ट बीट्स और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता हो तो छोटा का हार्ट अटैक रिस्क भी कम हो जाती
1: है। जी जी जी।
0: देन मैंने बताया कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने लगती है, हमारी जो पाचन शक्ति है वो इम्प्रूव हो जाती है,
1: हाँ।
0: हमारे हड्डियाँ, हमारे मसल्स वो स्ट्रांग होने लगते हैं। देन आगे जाके छोटा का तंबाकू के जो खाने वाले जो सबसे डेंजर प्रॉब्लम है वो है कैंसर, उसकी भी रिस्क कम हो जाती है। देन डायबिटीज में हमारे पास लोग है जिन्हें तंबाकू छोड़ दी है,
1: हाँ,
0: उनकी डायबिटीज की गोलियां भी बन हो गई क्योंकि शुगर भी नॉर्मल होने लगी है अभी उसकी।
1: अच्छा।
0: ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट है,
1: हाँ, हाँ,
0: कि तंबाकू लत छोड़ने के बाद उनकी डायबिटीज की गोलियां भी बन हो गई है।
1: क्या बात।
0: तो ये सब उसके फायदे है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसके क्या फायदे है छोड़ने के बाद। तब यस, ये जरूरी है कि जब तंबाकू में जो 7,000 केमिकल है उसमें से एक केमिकल का नाम है निकोटीन, और निकोटीन की वजह से हमारे ब्रेन में डोपामिन बढ़ता है और उसकी वजह से उसकी लत लगती है।
1: अच्छा।
0: तो जब तंबाकू सडनली आप छोड़ देते हो, लोग कहते हैं कि हम आज मैं अगर 5 बार खाता हूँ तो कल, हाँ, 4 बार खाऊंगा, तीन, हाँ, तो ऐसा कभी नहीं होता, उसको झटके से ही छोड़ना है।
1: अच्छा।
0: तो ही फायदा होगा, तो ही उसकी लत छूटेगी। तो जब झटके से छोड़ते हो तब आपको निकोटीन का विड्रॉल सिम्टम 100% महसूस होगा,
1: शरीर जो है अपनी प्रतिक्रिया देता है,
0: वो महसूस होगा ही।
1: हाँ।
0: वो जो विड्रॉल सिम्टम जैसे कि वो वीकनेस आ जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। पर्टिकुलर ड्राइवर कंडक्टर को ये बहुत होता था हमारे,
1: हाँ,
0: पास,
1: हाँ, हाँ।
0: तो ये, लेकिन यहाँ पे जरूरी है कितना टाइम तक ये विड्रॉल सिम्टम रहता है।
1: अच्छा,
0: वो दो दिन से ज्यादा दो हफ्ते चलता है, उसके बाद अपनी बॉडी खुद को एडजस्ट करने लगती है।
1: जी जी जी,
0: उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है,
1: तो पूरा शरीर अपने जो है सामान्य स्थिति में
0: आ जाता है, बस
1: जैसा तंबाकू खाने से पहले
0: पहले था वैसा। बस थोड़े दिन के लिए अपने को सहन करना है, और वो समय अगर निकाल डाला तो वापस कभी तंबाकू खाता नहीं।
1: कितनी जरूरी बात है।
0: यस,
1: हमारे श्रोताओं को उनमें से किसी को अगर ये लत है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो छोड़ना चाहते हैं तो तुरंत छोड़ दें,
0: झटके से छोड़ना है,
1: झटके से एक साथ, और उसके बाद
0: दो दिन से दो हफ्ते
1: सोचना ही नहीं, दो हफ्ते ज्यादा से ज्यादा दो हफ्ते,
0: ज्यादा से ज्यादा दो
1: ये लक्षण रहेंगे,
0: बस विड्रॉल सिम्टम,
1: विड्रॉल सिम्टम, और उसके बाद वो सामान्य
0: सामान्य हो जाएगा, अपनी बॉडी अपने आप को रिकवर करती है।
1: वाह वाह, तो फायदे हमने जान लिए। हम तंबाकू की बातें जब होती है तो एक एक्ट है, एक ऐसा नियम है, कुछ वो कानून है, कोप्टा एक्ट कुछ ऐसा कहते हैं।
0: यस,
1: ये क्या होता है, क्या कोप्टा एक्ट क्या है?
0: सी, जैसे तंबाकू की वजह से हमारे पास जैसे सबसे ज्यादा मौतें होती है, खर्चा होता है।
1: जी जी,
0: 100 रुपए के टैक्स के सामने 816 रुपए का हमें खर्चा हो रहा है। तो ये उसको और कम करने के लिए कुछ कानून बनाया है, उसको कोप्टा एक्ट बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म है कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट।
1: अच्छा, कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, कोप्टा एक्ट,
0: कोप्टा एक्ट। उसके अंतर्गत आपको पब्लिक प्लेस में तंबाकू का कोई भी प्रकार का सेवन प्रतिबंध है, इज अ पनिशेबल ऑफेंस।
1: जी जी,
0: देन वो खाके पब्लिक प्लेस में थूकना भी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। देन उसके एडवर्टाइजमेंट
1: जी
0: जो होती है, हाँ, वो भी अलाउ नहीं है आपको कोई भी प्रकार के। सो ये एक एक्ट इसलिए लाया है कि लोग एक दूसरे को देख के जो खाते हैं वो ना खाए, और उसकी लत और उसको कम करते जाए हम लोग। उसका फायदा हुआ है, कम हुई है,
1: हाँ,
0: जो लोग खाने वाले परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन जो उसे और हमें आगे लेके जाना है उसको एक्ट को, और अभी कुछ सरकार ने उसको कड़क किया है कि उसके अंतर्गत वो सरोगेसी एड बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: उसको भी बैन किया है,
1: हाँ,
0: कि कुछ नाम सेम रखते हैं लेकिन कुछ अलग प्रोडक्ट रहता है। एक्स तंबाकू का जो प्रोडक्ट था पहले,
1: जी,
0: उसको खाली नाम सेम रखते हैं और प्रोडक्ट कुछ अलग रहते
1: होता है, तंबाकू ही है मगर उसको कुछ एक नया नाम और नया रूप दे देते हैं,
0: या तो फिर उसका प्रोडक्ट अलग कर देते हैं।
1: अच्छा, अच्छा।
0: कि जो पहले वो नाम तंबाकू के वजह से के लिए यूज होता था, अब वो तंबाकू की वजह से नहीं होते, कुछ अलग प्रोडक्ट जो नॉर्मली लोग खाते पीते उसके लिए, तो सरोगो एड बोलते हैं, उसको भी बैन किया है।
1: जी, जी।
0: तो ये इसका उद्देश्य यही है कि तंबाकू का कंजम्पशन कम हो जाए, उसके वजह से जो बीमारी है कम हो जाए और खर्चे भी कम हो जाए।
1: तंबाकू तो नहीं मगर तंबाकू जैसे और तंबाकू इस्तेमाल करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसी की अभी बात कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग सीधे सीधे तंबाकू तो नहीं खाते मगर ऐसे प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्टली जिससे तंबाकू उनके शरीर में जाता है।
0: जैसे अभी बहुत कुछ आ गया है, वो इनहेलेशन आ गया है,
1: हाँ
0: भले सिगरेट नहीं पीते लेकिन कुछ इनहेलेशन तरीका ई सिगरेट आ गई है, उसको भी अलाउ नहीं है, वो भी हानिकारक है।
1: जी जी,
0: उसमें हानिकारक।
1: तो ये जो तंबाकू ना खाके अगर ये ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी उतना ही धोखा, उतना ही रिस्क। जो व्यक्ति तंबाकू नहीं खाता वो गलती से उसके शरीर में तंबाकू चला जाए तो पहला रिएक्शन बॉडी का तो ये होता है कि जैसे कभी पान खाते हुए पान में किसी ने हल्का सा तंबाकू डाल दिया और वो हमने खा लिया तो तुरंत उल्टियां होने लगती।
0: यस यस यस, और बहुत बार तो जैसे,
1: लेकिन जिनको लत लगती है उनको पहली बार ऐसा नहीं होता,
0: उनको नहीं होता। ये जो आपने बताया वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको।
1: हाँ,
0: अगर हस्बैंड स्मोक करता है,
1: जी जी,
0: उसके वाइफ है या उसके बच्चे है,
1: हाँ,
0: तो उसमें भी वो धुआं जाता है ना।
1: बिल्कुल, हाँ,
0: वो धुआं जाता है। देन या घर में कोई तंबाकू खाता है तो उसको देख के बच्चे भी उसके खाने लगते हैं।
1: अच्छा,
0: तो ये बहुत जरूरी है। तो पैसिव स्मोकिंग के वजह से इट हैज बीन एस्टैब्लिश कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, जैसे कोई एक फैमिली में एक हस्बैंड स्मोक करता है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसके वो धुआं उसको जाए तो उसके बच्चे को भी खतरा है।
1: जी,
0: जो अभी तक दुनिया में आया नहीं है उसको भी खतरा है,
1: तो उस पर भी असर हो रहा है,
0: बहुत खतरा है उसके लिए, सबसे ज्यादा खतरा है उसको। तो
1: जी,
0: जो पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको।
1: हाँ,
0: ये सिर्फ चीजें लोगों को आई डोंट नो मालूम है या उसको इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, आई डोंट नो, बट लोगों को मालूम होना जरूरी है ये बातें।
1: अच्छा, हमने सुना है कि कुछ दवाइयों के तरीके में कुछ तरह के मेडिसिन है उसमें तंबाकू का इस्तेमाल भी होता है?
0: नहीं, आई डोंट थिंक सो।
1: अच्छा,
0: आई डोंट थिंक सो।
1: या कुछ लोगों ने कहा कि हमें तो फलां डॉक्टर साहब ने कहा है कि पान में थोड़ा तंबाकू खा लिया करो।

0: कोई जादुई मिक्स आपने बनाया है?
1: यस, उसको हमने
0: ये कैसे हुआ, कब हुआ
1: या
0: और इसका क्या आपको परिणाम कैसा देखने को मिला?
1: उसको हमने नाम दिया मैजिक मिक्स या मैजिक चूरन,
0: जादुई चूरन,
1: जादुई चूरन। जैसे अभी तंबाकू की जो एडिक्ट लोगों में है, दो प्रकार की एडिक्शन है। एक है साइकोलॉजिकल एडिक्शन जो 90% लोगों में, 10% लोग में फिजिकल डिपेंडेंसी है।
0: अच्छा,
1: तो 90% लोग बस उसको वो कलर का चूरण मांगता है और उसको हाथों में घसना है और खाना है, और उसका जो कैनिस्टर है या डब्बी बोल रहे हैं जो महाराष्ट्र में, तो वो उसको दिख गई तो उसको लगता है मैंने तंबाकू खा लिया।
0: अच्छा।
1: तो हमने वो बेस को ध्यान में रखते हमने चूरण बनाया है जिसमें दालचीनी, अजवाइन, जीरा, बड़ी शोप और लवंग का इस्तेमाल किया है। जब उसको आप ग्राइंड करोगे तो हुबहू तंबाकू सरीका ही लगेगा।
0: अच्छा।
1: और जो चूने की जगह पे हमने राइस पाउडर यूज करते हैं उसमें।
0: अच्छा।
1: तो जब आप उसको हाथ में लेके घसोगे तो फील सेम ही आएगा कि आप तंबाकू को घिस रहे हो।
0: जो लोग तंबाकू मल के खाते
1: हैं तो उसको कलर भी वैसा ही है उसका। ना उसमें साइंस ऐसा है कि जो दालचीनी है इसकी प्रॉपर्टी है कि जो निकोटीन के विड्रोल को और कम करती है।
0: अरे वाह,
1: तो साइंस भी है उसके पीछे।
0: क्या बात है।
1: तो इसके वजह से हमने चूरन बनाया, उसका नाम रखा है मैजिक मिक्स।
0: मैजिक मिक्स,
1: मैजिक मिक्स,
0: वाह वाह वाह।
1: और वो मैजिक ने सच में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैजिक किया है।
0: हाँ।
1: और वो खा के बहुत सारे लोगों ने तंबाकू छोड़ दिया है।
0: वाह वाह।
1: तो मैं लोगों को बोलूंगा कि उसकी लिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब में।
0: अच्छा।
1: मैजिक मिक्स मेरा नाम डाल के आपको मिल जाए कैसे बनाना है।
0: हाँ।
1: हमने उसको कॉपीराइट किया है, आप कोई भी घर पे बना सकता है।
0: अच्छा।
1: और उसको यूज करे और अपनी जब भी तलब लगे तंबाकू की जगह उसको खाए।
0: मतलब ये मैजिक मिक्स कोई कमर्शियल प्रोडक्ट?
1: नो, इट इज नॉट कमर्शियल प्रोडक्ट।
0: ये सबके लिए है, सबके फायदे,
1: सबके फायदे के लिए। हमने उस खाली कॉपीराइट किया कि उसको कमर्शियल यूज कोई ना करे उसको।
0: अच्छा।
1: आपके लिए ये, आप खाओ, खुद बनाओ,
0: सबके लिए ये मुफ्त है, फ्री है,
1: खुद बनाइए घर पर खाइए।
0: तो ये फॉर्मूला जो है वो यूट्यूब पे देख करके बनाया जा सकता है।
1: और मेन बात उसको खा के थूकना भी नहीं है।
0: हाँ।
1: तो स्वच्छ भारत अभियान को भी हम प्रमोट कर रहे हैं उससे।
0: क्या बात है, वाह वाह।
1: उसके खाने के बाद वो निगलना ही है क्योंकि वो निगलने के बाद बहुत सारे बेनिफिट देता है।
0: बिल्कुल,
1: सब ये अपने गर्म मसाले फायदेकारक ही है हमारे बॉडी को,
0: हमारे सुनने वालों के बेनिफिट के लिए।
1: यस,
0: हम इस मैजिक मिक्स का जो फॉर्मूला है उसे एक बार दोहराते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आपने डाली?
1: दालचीनी,
0: दालचीनी,
1: अजवाइन,
0: अजवाइन,
1: जीरा,
0: जीरा,
1: बड़ी शोप,
0: सौंफ,
1: सौंफ,
0: सौंफ, हाँ,
1: और एक आध लौंग।
0: अच्छा।
1: उसको मिक्स करके,
0: लौंग तो एक ही ले
1: एक रहे
0: हैं,
1: बाकी इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी,
0: इक्वल क्वांटिटी,
1: इक्वल क्वांटिटी, उसको ग्राइंड करना है मिक्सचर में। मिक्सचर होगा वो तंबाकू सरीका लगेगा।
0: अच्छा।
1: लेकिन उसमें तंबाकू नहीं है, चूने की जगह पे राइस पाउडर यूज करने का, वो भी घर चावल का आटा।
0: अच्छा।
1: तो ये आप करके उसको सेम कनिस्टर में,
0: तंबाकू मलने की आदत है,
1: ऐसे ही मल के खाओ,
0: मल के जो है अपना पूरा एक्शन कंप्लीट करो,
1: एक्शन कंप्लीट,
0: और उसके बाद चाहे तो उसको होठों में दबा ले थोड़ी देर,
1: गया दबा लो,
0: उसका जो जूस निकलेगा
1: वो
0: आपके शरीर के लिए
1: फायदेमंद, उसको थूकना भी नहीं है।
0: क्या बात है, बहुत ही जादुई बात है ये तंबाकू के बारे में, इस लत को छोड़ने के लिए जो है कारगर सिद्ध होगी। तो डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम के आखिर में कुछ तंबाकू छोड़ने के बारे में कुछ पते की बात हो जाए, आप क्या बताना चाहेंगे इस मौके पे?
1: मैं भारत के वासियों को बताना चाहता हूँ कि तंबाकू कभी भी हमें फायदा नहीं करता है, उससे सिर्फ नुकसान नुकसान नुकसान ही होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक भी नुकसान होता है।
0: जी जी, जी।
1: वो लोगों को मालूम नहीं है, ऐसा सर्वे हुआ है कि अगर आपने तंबाकू की लत छोड़ दी तो आपका जो एक इंडिविजुअल घर की जो आर्थिक परिस्थिति 10% इंप्रूव हो जाती है।
0: क्या बात है। मुझे एक और बात याद आई कि मेरे कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त था।
1: हाँ।
0: और वो कृषि बैकग्राउंड से था।
1: हाँ।
0: उसके घर वाले जो है खेती करते थे। हाँ। तो वो कहता है वो तंबाकू खाया करता था बहुत नियमित रूप से।
1: हाँ।
0: और वो कहता है मुझे सांप ने अगर काट लिया तो मुझे जहर नहीं चढ़ेगा।
1: हाँ।
0: तो ये कितना बड़ा मिथ है, आप जरा
1: मिथ ही है, सब मिथ ही है,
0: बहुत बड़ी गलत,
1: बहुत गलत फहमी है। ये तंबाकू छोड़ना बहुत जरूरी है
0: जी,
1: वो सिर्फ वो इंडिविजुअल को नहीं खाता है, पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है वो। जैसे हमने देखे, आप किसी को अगर देखना है तो टाटा हॉस्पिटल में जाके एक बार चक्कर मार के आए बस, खाली समझ जाएंगे ये तंबाकू से क्या गड़बड़ होती है।
0: जी जी।
1: लोगों को जिंदा है लेकिन मुंह में खाना नहीं खा सकते, नाक में नलीट से खाना खाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने फैमिली को, अपने देश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
0: जी,
1: उसको मजबूत करने के लिए, शारीरिक और मानसिक और आर्थिक मजबूत करने के लिए हमें तंबाकू की लत को छोड़ना ही है।
0: और कोई भी फॉर्म हो तंबाकू का,
1: कोई भी फॉर्म,
0: या तो कच्चा तंबाकू है या वो उसकी पाउडर नसवार
1: नसवाली
0: है,
1: स्मोकिंग है,
0: स्मोकिंग है,
1: कोई भी प्रकार का
0: तंबाकू,
1: बस उसको छोड़ दो, बस खत्म करो। अपनी फैमिली और अपने देश के लिए उसको छोड़।

0: बहुत ही अच्छी बातें आज तंबाकू विरोध जो है इसके बारे में आपने बताई, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी,
1: थैंक यू,
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद।
1: तंबाकू की वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोगों की मृत्यु होती है। तंबाकू की वजह से मनुष्य उसकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ जाती है, और उसके वजह से उनकी फैमिली बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। तो मैं आज तंबाकू विरुद्ध दिवस के निमित्त श्रोताओं को अपील करूँगा कि तंबाकू की व्यसन को पूरी तरह छोड़ दे, और झटके से छोड़ दे, और अपने फैमिली को और हमारे देश को मजबूत बनाए। धन्यवाद।

विश्व तंबाकू दिवस पर अभी आप सुन रहे थे VEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत। आज का मैटिनी शो बस यहीं तक, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली

0: संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजासुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस पहुंची अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेता परेश रावल का जन्मदिन है। बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हम उन्हें और उनकी फिल्मों के गाने आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। भागम भाग इस फिल्म का गाना रेमो फर्नांडिस और सुजेन की आवाज़ों में, समीर के बोल संगीत प्रीतम का।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आंखें फिल्म का गाना, नितिन रायकवार आदेश और अरुण बख्शी की आवाज़ों में। नितिन रायकवार के बोल, संगीत है जतिन ललित का।

अगला गीत सुनते हैं कार्यक्रम का ओ माय गॉड, इस फिल्म का गाना है कैलाश खेर, मीत ब्रदर्स और अनजान की आवाजें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये है राजा फिल्म का गाना, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन औलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।

0: उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो ज़िगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi today said that Indian Armed Forces remain on high operational alert and are prepared for Operation Sindoor 2.0 if the situation warrants further military action. Addressing the passing out parade of the 150th course at the National Defence Academy in Kharagwasla, Pune, General Dwivedi said that Operation Sindoor demonstrated India's ability to respond to provocation with precision and resolve, setting a benchmark for the country's response to emerging security challenges.
3: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
2: Myanmar President U Min Aung Hlaing arrived in Bodh Gaya today as part of his 5-day visit to India. During the visit, he offered prayers at the world-renowned Mahabodhi Temple and the historic Sujata Temple. The president is also scheduled to visit various Myanmar Buddhist monasteries in Bodh Gaya. Earlier, Bihar Agriculture Minister Vijay Kumar Sinha called

आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा राजकोट और पहुंच प्रस्तुत है फौजी दोस्तों के लिए कार्यक्रम जय भारती। जय भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों आज के कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं मुकेश की आवाज में आनंद फिल्म का गीत, गीतकार गुलजार, संगीतकार सलील चौधरी।

आइए अब सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया फिर कब मिलोगी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में।

फिल्म का नाम है बावर्ची, आवाज लता मंगेशकर की, बोल कैफी आजमी के, संगीत मदन मोहन का।

आइए अब सुनते हैं हसरत जयपुरी का लिखा, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया छोटी सी मुलाकात फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

फिल्म का नाम है गोपी, आवाज लता मंगेशकर की, बोल राजेंद्र किशन के, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

फिल्म का नाम है दो चोर, आवाज किशोर कुमार की, बोल मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत आरडी बर्मन का।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कटी पतंग से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने।

और दोस्तों कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं रविंद्र जैन का लिखा और संगीतबद्ध किया दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म का गीत, येसुदास, हेमलता और बंसरी सेनगुप्ता की आवाजों में।

जय भारती। ये था फौजी दोस्तों के लिए कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भुज केंद्र से किया गया। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता

0: नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ऊ मिन ऑलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
3: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3 करोड़ 33 लाख से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय

0: राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की

0: सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां बड़ी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानो ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
2: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिंट ऑनलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे। महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में। नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आशिक फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अपना बना के देखो ये फिल्म का नाम है। आशा भोंसले और साथियों की आवाजें, SH बिहारी के बोल, संगीत है रवि का।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आजाद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बाजे घुंघरू फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी, सबिता बनर्जी, सीता और साथियों की आवाज़ों में, शिवराज श्रीवास्तव का लिखा हुआ गाना, धनी राम का संगीत। अगला गाना बात एक रात की, इस फिल्म का गाना हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है SD बर्मन का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं, बगदाद की रातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, संगीत है डी दिलीप का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बनारसी ठग इस फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर की आवाज़, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको वो गीत सुनवाते हैं जिसमें हमारे श्रोताओं ने पत्र लिख करके हमें उस गाने को सुनने की फरमाइश भेजी है। तो पहला जो गीत है ये दिल फिल्म का गाना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में समीर का लिखा हुआ गाना आनंद मिलिंद का संगीत है। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शमसुद्दीन की बाड़ी पूरा बीकानेर राजस्थान से। ये पत्र आया है हमारे पास मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अनजान, सैफ अली, कमाल खान, मरियम बानो और मोहम्मद अली। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये अपराध फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम हीवरखेड़ तहसील तेल्हारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारस, पायल, श्वेता और उर्वी बेन अड़िया ने।

0: जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अदवंत। आपने जिस गाने की फरमाइश की है वो है मर्यादा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत मस

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला जो गीत है ये खानदान फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में है। राजेंद्र कृष्ण के बोल है, संगीत रवि का। ये गीत सुनना चाहते हैं रामलीला मैदान सचेंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मनी, मीत, शिवांश, अनूप सिंह और अभिजीत सिंह। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का गाना। 1999 की फिल्म है ये कच्चे धागे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, नुसरत फ़तेह अली खान का संगीत है। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने लिख भेजी है वो हैं गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, गोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आपकी पसंद का कच्चे धागे फिल्म का ये गाना।

मनचाहे गीत कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं के पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना मुकेश और कंचन की आवाज़ों में, इंदिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना।

0: इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पी जी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: हेलो
1: जी,
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
0: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं एक नाटककार हूं। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूं। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: मेरा नाम डेजी है।
0: डेजी?
1: क्या हुआ?
0: मुझे मुझे कुछ याद आ रहा है।
1: क्या?
0: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
1: हाँ।
0: आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं की?

0: अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
1: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
0: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
1: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
0: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का, जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
1: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
0: हाँ, मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा, बड़ किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के दो तीन अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
2: डॉक्टर रामदास, गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
3: गुड मॉर्निंग बेनी, गुड मॉर्निंग।
4: कौवी तबीयत कैसी है?
2: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
3: चिंता की कोई बात नहीं, अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
2: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
3: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
2: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
3: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे ये क्या, गिटार? गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
2: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूं।
3: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है।
2: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
3: अच्छा,
2: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
3: तब तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों?
5: नमस्ते डॉक्टर।
3: ओ नमस्ते,
2: कहाँ गई थी तुम?
5: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
2: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
3: मेरी पत्नी जो ठहरी उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई?
2: हम दोनों के लिए।
5: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
2: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना।
3: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ, फिर मिलेंगे।
2: अच्छा,
5: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं?
2: इसमें हर्ज क्या है, सच तो यही है ना?
5: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
2: इसमें शर्म का है कि क्या मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है? देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
5: अच्छा जी, तब तो एक काम करें। इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें। इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: डेजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: हाँ, ख्याल है।
0: मुझे याद है, ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी,
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊँ?
1: हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: ए, डेज़ी, इधर आओ ना।
1: बेनी, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ? आओ ना।
1: बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, क्या हुआ?
0: कुछ दर्द सा हो रहा है।
1: अरे, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। लेट जाओ बेनी, लेट जाओ ना तुम। अरे, तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है।
0: नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत करो, जरा सी गिरी न से चिंता की कोई बात नहीं।
1: नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ।
0: ठीक जी।
1: बेनी, एक बात बताओ।
0: पूछो।
1: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
0: बताऊं? दोनों।
1: मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है?
0: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में।
2: कलाकार भी हैं?
0: कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप
1: डॉक्टर लॉरेंस हैं ना?
2: जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ। तुम बेनी हो ना?
0: हाँ डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?
2: हाँ मैं लॉरेंस हूँ।
0: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
2: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
0: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका लॉरेंस।
2: और मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बेनी।
0: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे।
2: तो क्या मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ?
0: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
2: यही कोई 14 या 15 साल।
0: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खासतौर पर इस हालत में।
2: Exactly.
0: गजब की याददाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी।
2: नमस्ते। नमस्ते, तो मैं देखते ही समझ गया था
1: आप आ गए हैं, तो लगता है जैसे।
2: सब वो बातें रहने दीजिए अब। बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
0: चेस्ट में पेन है।
2: हाँ,
0: दिल की तरफ भी पेन है। सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
1: ये ठीक से नहीं बताते। बस यही कह देते हैं इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
2: हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेजी
1: जी,
2: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
1: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
0: डेजी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेजी के सुपुर्द कर दिया है।
2: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
0: हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
2: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर, जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
0: बाय।
1: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
0: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
1: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा, मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
0: अरे गिरिजा, तुम?
1: आप यहाँ?
0: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है।
1: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
0: जरा शिष्टता से बात करो।
1: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
0: जरा आहिस्ता बोलो।
1: मुझे पहचान लिया आपने?
0: हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
1: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
0: तुम ऐसा सोचती हो?
1: सोचती नहीं, बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
0: हाँ, ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
1: हाँ, आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी। है? इस कदर गिर तो नहीं गई हूँ?
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
1: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती।
0: क्या?
1: आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
0: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
1: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक चेहरर थे, चेहरर।
0: मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है?
1: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
0: तमीज से बात करो। मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
1: अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
0: देखो, मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ।
1: हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा।
0: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।
1: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रहे। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। 2 तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।
3: मुझे कुछ नहीं कहना है।
0: लेकिन मुझे तो कहना है, कल जहां बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूँ।
3: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
0: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझा कर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
3: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
0: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
3: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
0: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया, बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
3: अच्छा।
0: हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
3: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
0: कितने रुपए खर्च हुए?
3: करीब 600, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
0: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकते हो, डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
3: क्या?
0: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसीलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
3: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
0: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरिजा, मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
1: गिरजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
4: वो बेनी कहाँ है?
1: चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
4: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
1: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
4: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है। वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसी हफ्ते में। हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना, मेजर ऑपरेशन है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा।
1: डॉक्टर, डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना।
2: अरे भाई, अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
1: डॉक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर।
2: डेजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी।
1: नहीं, मुझ में ये सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर।
2: डेजी धीरज रखो, डेजी धीरज रखो, बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। अरे लो, बेनी आ रहे हैं।
5: आइए आइए, कहाँ थे जनाब?
6: ओ डॉक्टर,
5: भाई जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है पेशेंट बेड पर नहीं मिलता। इस पैकेट में क्या?
6: बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया?
5: भाई रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
6: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
5: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ, आई विल डू माई बेस्ट।
6: लॉरेंस, ये बात इस डेजी से कह दो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी, अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
5: और हाँ बेनी, एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है। आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूं अब। सी यू अगेन, बाय।
1: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठा लाए?
6: तुम्हारे लिए एक चीज है।
1: अच्छा, देखो तो।
6: लो, देख लो।
1: साड़ी, ये अब काहे को? और यहाँ
6: मेरी ओर से प्रेजेंट।
1: प्रेजेंट?
6: हाँ, तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो, मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। ए? तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
1: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो? बेनी, हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
6: हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है, तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर, साड़ी पसंद आई?
1: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
6: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़ी ना समझो, तुम अगर ऐसी ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देखकर रोने लगी? नहीं, रो मत,

0: Beni? Beni? Beni? Doctor! Doctor!
1: कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा। लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। सहसा सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से डर गया।
2: Oh, no.
1: सदा के लिए मुझसे बिछड़ गया।
2: आखिर ये हुआ कैसे?
1: ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा। सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। बाद मुझे होश आया। मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
3: डेजी, ये सब क्या है? छोटे बच्चों की तरह?
4: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरजा।
3: दुख तो मुझे भी है डेजी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया था।
4: मैं अब क्यों जीवित हूँ गिरजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई। मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
3: ना तेजी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो। हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो देखो, इससे बेनी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
4: गिरजा
3: तेजी, अच्छा अब मैं चलती हूँ। ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम देर तक बैठकर बातें करेंगे।
1: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे। और एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर हम, मैं और लॉरेंस विवाह सूत्र में बंध गए।
2: अच्छा?
1: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
5: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
6: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली।

0: 2 जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: जोगी जी प्रेम पर
1: इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं। और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां, बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओं चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चूहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है। और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है। और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली, बदमाश
0: जी,
1: प्रैंक करने वाली हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदारी,
1: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है।
0: हाँ।
1: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
0: हाँ।
1: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
1: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ, घर में भी।
0: हाँ।
1: बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
0: अच्छा।
1: और कुछ चीज़ें थी जो मेरी थी
0: जी,
1: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी। जैसे कलर लगाया उसको सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो और जो वृक्ष खिलाई, अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
0: यानी साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही हैं और गुंजा
1: करती रहूंगी।
0: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी। और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
1: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं।
0: अच्छा।
1: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
0: जी,
1: उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसी हो वैसी रहना, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ एक्टिंग, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई, मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई।
0: अच्छा।
1: आपने तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है
0: जी।
1: लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया
0: जी,
1: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
0: अरे वाह।
1: हाँ,
0: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी? आप अभिनेत्री, आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि हाँ, आप अभिनेत्री बनेंगी।
1: हाँ,
0: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
1: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था।
0: अच्छा।
1: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
0: जी,
1: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ साधना को।
0: हाँ।
1: और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
0: तो अच्छी बात है। लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि हाँ, साधना गाओ। लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
1: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3-3.5 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे,

0: और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए,
1: है ना।
0: तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उससे वक्त आवाज़ अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
1: उतनी बुलंद आवाज़।
0: हाँ, बुलंद आवाज़ थी
1: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थीं, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो भला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है, और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि आपने मंच में नृत्य अभिनय बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद किए
1: हाँ,
0: होंगे।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया,
0: अच्छा
1: वो मेरी बहन करती थी, तो
0: अच्छा
1: मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही हैं तो मैं गाने में ठीक हूँ,
0: अच्छा
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कत्थक करती थी बहुत ज़बरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कत्थक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए।
0: अच्छा
1: अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना,
0: बहुत
1: तो
0: दुखद घटना है जी।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूँगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्य की हैं उस जोगीरा
1: जोगीरा
0: में, और हमने देखा बड़ा
1: में
0: अच्छा
1: मार
0: लगा।
1: खा के क्यों?
0: अच्छा, वो किस्सा भी जरा बता
1: नहीं,
0: दें
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी।
1: हमारे डांस डायरेक्टर,
0: जी
1: तो गाना तो बड़े मज़ेदार था। हाँ,
0: हाँ
1: और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी,
0: अच्छा
1: तो मैं तो
0: हाँ
1: नहीं थी, तो उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम,
0: जी
1: और घूम के आना था,
0: जी
1: मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी ये, तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है, तो एक बार आएगा आज तुमको डांस आएगा देखना, लेकिन डंडा मारा पैर में एकदम ठीक कर दिया मैंने
0: अच्छा, एक
1: आपको
0: डंडे में डांस हो गया।
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते हैं
0: लाठी के भूत।
1: लाठी के भूत, मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी इसे

0: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक पहुंचाया,
1: और क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी।
0: हाँ
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक कटक के डांस किया उसने, फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो हमें वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप एक सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो किरदार किया कैसे आप?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी। अगर वो सीखी होती तो मैं बन जाती किसी भी चीज में।
0: अच्छा,
1: वो बह गया, बह रहा था जैसे, तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी। छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ।
0: हाँ।
1: तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
0: अच्छा,
1: हाँ ये है, ये फ्रेम है, ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता, पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर कैमरे की, तो यही सच। और दूसरा वो उसके जो डीओपी, हाँ उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो बोलते सीधे नहीं, इतना सा बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ।
0: अच्छा,
1: तो 2-3 चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है।
0: हाँ।
1: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती थी तो वो नेचुरली था, अंदर तो आ गया
0: जी।
1: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
0: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
1: मुझे लगता है कि पहली बात एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए। तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज़्यादा हो गया कम हो गया, पर जो चीज़ है ही नहीं आपके अंदर, और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा ले के, तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को। हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते हैं फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं
0: जी।
1: तो
0: थोड़ा सा खुद को परख के आए ऐसा आपका कहना है। हाँ। और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय भी जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
1: हाँ, ऐसा
0: एक
1: तो
0: ये ईगो भी सामान्यतः लोगों में होता है कि हमने किया है, तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
1: नहीं? कुछ तैयार नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना।
0: हाँ,
1: वो भी एक्टिंग ही चाहता है
0: जी,
1: है ना, हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी
0: जी।
1: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होके प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं क्योंकि हमको पता है, वो अपनी समझ है
0: जी,
1: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज़ नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूँ
0: जी।
1: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
0: अच्छा, एक्टिंग नहीं करना,
1: नहीं करना
0: ही एक्टिंग है।
1: हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ। ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ।
0: हाँ, कि जी जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो साधना जी हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं, तो मौका है दस्तूर भी है कि आपकी पसंद सुन ली जाए।
1: अच्छा ऐसा
0: जी, तो कोई गीत बता दीजिए जो
1: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। तो कुछ दिल ने कहा, ऐसी भी बातें होती हैं।
0: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत
1: और बहुत मीठा संगीत है।
0: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं खूबसूरत सा नगमा।
2: कुछ दिल

0: और गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं। और उसी उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं, जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30, ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा। तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं तो।
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी, तो हॉस्पिटलाइज थे। तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे
0: हाँ
1: तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी,
0: जी,
1: तो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा
1: उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि

0: आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना, तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था, तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी। और अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, तो ह्यूमन टच नहीं रह गया है,
1: जी जी
0: तो वो
1: जी
0: मैंने मिस किया उस फिल्म में। और बाकी तो छोटा सा अच्छा सा रोल था। और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है
1: जी
0: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है,
1: जी
0: तो इसलिए मैंने कभी उन पे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा
1: जी
0: इस सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा।
1: जी
0: लेकिन हाँ, अच्छा लगा। प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
1: नाइस नाइस
0: प्रोडक्शन में,
1: जी जी
0: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है, बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
1: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे।
0: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था,
1: अच्छा
0: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं,
1: जी
0: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है, तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत है
1: आदत
0: बैठने।
1: अनुसार आप लड़कियों से घिरी
0: हाँ,
1: रहती
0: तो
1: थी।
0: टाइम निकल जाता है, बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी।
1: जी
0: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है, तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहां पे।
1: नहीं,
0: हाँ
1: वैसे आप बहुत हॉट है, शॉल की
0: हाँ
1: जरूरत नहीं। तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के बाद।
0: हाँ
1: जी
0: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने,
1: जी
0: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी, और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकरावर्णम फिल्म आई थी,
1: जी
0: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकरावर्णम। तो
1: ओके
0: जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में,
1: जी
0: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता थे, आबिद रिजवी, मुझे
1: जी
0: बिल्कुल बेटी की
1: आबिद
0: तरह,
1: रिजवी जी
0: वहाँ
1: जी
0: तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सबटाइटल।
1: नीचे का जी
0: लेकिन वो ले गए,
1: जी
0: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का, और मैं ऐसे देखती रह गई। मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम, मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन 2 मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं, तो
1: वही सेम
0: उसमें
1: फिल्म।
0: हाँ सेम फिल्म,
1: ओ
0: लेकिन आपको जो गुरु हैं उनकी बेटी का रोल। मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूँगी, जुड़ना ऐसी फिल्म
1: जी
0: से।
1: जी
0: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहाँ पे
1: जी बिल्कुल
0: साउथ में, सरगम ये सब उन्होंने ही बनाई, तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन
1: बोलती आंखें
0: हाँ
1: जी
0: तो इनको ऑन इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए,
1: जी
0: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, 2 बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना
1: जी
0: शायद,
1: जी
0: हाँ
1: जी उसके बाद ही थी।
0: हाँ तो मस्ती में की बस, और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं,
1: जी
0: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी,
1: अच्छा
0: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं,
1: जी
0: मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। तो वो फिल्म की, उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था, और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के, दादी बन के, चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी।
1: हाँ
0: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी, फिर बच्चों को देखना ये सब,
1: जी जी
0: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई, तो ये पिछले 5 सालों की जुगनी,
1: जी जुगनी
0: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म है,
1: बहुत
0: देखे
1: अच्छी
0: हाँ।
1: फिल्म जी।
0: तो ये नए नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब,
1: हाँ
0: तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने
1: जी
0: मुझे, लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण।
1: जी
0: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत

0: हिट हुई है स्थल।
1: अच्छा
0: हाँ, तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके। दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है, है ना, सब मिल के काम कर रहे
1: मिल के
0: हैं।
1: काम कर रहे
0: हाँ
1: हैं, पारिवारिक तरीके
0: हाँ
1: से काम हो
0: हाँ
1: रहा है
0: फिर
1: जी।
0: मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से, तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था। उसने कहा रुको रुको, ये साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ। तो वो फिल्म की फिर वो, उसमें मजा आया मुझे बहुत।
1: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर, वो जब साथ में हैं
0: हाँ,
1: तो आपको क्या अलग लगा पहले का और
0: मुझे
1: अब का?
0: ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
1: अच्छा,
0: हाँ, क्योंकि ये
1: फ्रीडम।
0: भी बोलते, हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये
1: अच्छा
0: बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे कि
1: हाँ
0: ऐसा ही करना है। और कई कई जगह तो आए, पैर वैर छुए, बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी।
1: जी, हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे, आपको लेके
0: मेरे
1: जाएगा।
0: पति का नाम
1: आपकी
0: राजकुमार ही
1: जिंदगी में
0: है।
1: ही राजकुमार आ गए। वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
0: अरे
1: अच्छा,
0: वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
1: हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
0: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा अब नहीं करूंगी। तो ये बिहार विहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है, तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम और मिलने आए, तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ, और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने।
1: जी।
0: तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले, मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने, इनकार मतलब जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उस लिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले, अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू, वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ, तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो। मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं, कभी दाढ़ी रख के आ जा, इनको इतना गुस्सा है, बोले शादी करके बताता हूँ इसको, कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
1: कराने के लिए शादी कर ली।
0: शादी कर ली, बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर,
1: हाँ,
0: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। फिर
1: अच्छा, वही
0: मेरी,
1: लड़की हीरोइन चाहिए थी
0: हाँ
1: लेकिन उसके साथ शादी नहीं करानी। हाँ
0: होता है ना दिमाग में, शादी फिल्म लाइन की लड़की है,
1: हाँ
0: ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने फिर।
1: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
0: ये रात भीगी भीगी।

0: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की
1: वो
0: है,
1: वाली की है ना, गंगा मैया तो है
0: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो,
1: जी
0: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर
1: जी
0: थे,
1: जी
0: सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना इस एक फिल्म बनाई जाए।
1: हाँ
0: तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो
1: जी
0: जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो ही प्यारी चढ़ाई वो,
1: जी
0: जो कि ब्लॉकबस्टर,
1: जी
0: आज
1: सर
0: भी
1: जी
0: ब्लॉकबस्टर
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से,
1: जी
0: गंगा जैसन पावन पिरितिया हमार, तो
1: अच्छा
0: उसमें मैंने काम किया,
1: जी
0: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको,
1: इतना
0: बहुत
1: लाइटली तो नहीं
0: बहुत
1: लिया होगा।
0: बहुत अच्छी फिल्म बनी,
1: जी,
0: लेकिन
1: बहुत प्यारी है,
0: हाँ
1: बहुत
0: वो
1: अच्छी फिल्म।
0: हाँ
1: जी, एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन, लाइक जो वहाँ की भाषा है उस भाषा में आ जाती। ये जो भाषा का बदलाव है, इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी या सीखने
0: बिल्कुल
1: में
0: भी
1: आपको?
0: नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ,
1: अच्छा
0: हमें अपनी जो बाइयाँ आती थी उन सबसे तो
1: मतलब आप वो चाट और लस्सी
0: वो
1: खाते पीते
0: खाते पीते,
1: बड़ी
0: हाँ,
1: हुई। जी
0: क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं, सिर्फ
1: अच्छा
0: मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने
1: अच्छा
0: कि मुझे आनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे, तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे ये,
1: सरदार
0: हाँ,
1: खड़े हैं और
0: तो हमारा
1: भोजपुरी बोल रहे
0: पंजाबी
1: हैं।
0: एक्सेंट है ही नहीं।
1: अच्छा
0: हाँ, हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी,
1: जी
0: हाँ, ये काफ़ी फर्क है।
1: जी
0: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू, तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है, अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या,
1: अच्छा,
0: ऐसा था।
1: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ, जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, गुंजा को, कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है, वो गीत हम सुनाना चाहेंगे।
0: देखिए कौन दिशा में तो सब गाते ही हैं,
1: जी
0: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे, चंदन चंदन, तो एक
1: हाँ
0: वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी,
1: जी
0: और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था,
1: जी
0: चंदन चंदन ऐसा,
1: बहुत अच्छा।
0: तो मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है गाना।
1: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इस गीत के?
0: हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं,
1: रविंद्र जैन वहां पे
0: हाँ
1: उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे,
0: हाँ
1: गाया जा
0: रवि
1: रहा
0: जी,
1: होगा,
0: हाँ,
1: कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते
0: बहुत
1: समय?
0: अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा, अगर आप
1: जी बहुत
0: ये,
1: खूबसूरत गीत
0: हाँ,
1: है।
0: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था, और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे,
1: जी
0: और आज तक मैं बहुत बहुत ज़्यादा इसको पसंद करती हूँ।
1: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है,
1: हाँ.
0: तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई
1: हाँ
0: होंगी शायद?
1: हाँ बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि, और लगता सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक, क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी,
0: जी
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ
1: एक साथ,
0: बहुत बड़े कमरे में.
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था,
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो
1: बट
0: में.
1: जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा, तो ये बड़ी कमाल की चीज है.
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह
1: ओ
0: विराजमान होंगे.
1: भैया मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था,
0: हाँ,
1: उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
0: 30 गाने, 30 धुनें.
1: गाने में, और सुना रही थी पसंद है नहीं है अच्छा, और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो
0: जी
1: बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़िए छोड़िए नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी

0: उतनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, यू नो।
1: जी
0: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी, इतना गुणी, माय गॉड। उसका म्यूजिक भी बना लेते थे
1: शब्द भी लिख लेते
0: शब्द भी लिख लेते थे, एक सेकंड में
1: 30 गाने एक समय पे
0: बत्तीस होंगे, 30 होंगे, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का
1: लगातार।
0: दादा कह रहे नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल, शुरू कर दिया। तो उनसे
1: और कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है।
0: उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ और मैं और सचिन, हम लोग ने बहुत शोज किए। तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता।
1: ये रविंद्र जी ने कहा
0: से, क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में। तो बहुत प्यार देते थे और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार
1: जी। दादू, और जब टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो आनंद ही अलग आता होगा।
0: वो तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है।
1: अच्छा,
0: तो आई थिंक वो अक्खड़पन में सब कुछ सीख गई। अल्लड़पन कहते ना,
1: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई बचपन से।
0: ये बात है, मेरे दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो।
1: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना, लगेगी तो संभाल लेना। बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतना इतनी रोचक जानकारियाँ मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुँचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे ही घूमते?
0: नहीं नहीं, बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, क्योंकि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अभी शूटिंग भी करेगी। तो ये चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था।
1: अच्छा,
0: नॉट फ्रॉम माय हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें। लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फ़ोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूँ? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो।
1: अरे वाह,
0: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी। तो इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया, बाबा ने
1: बोल दिया।
0: तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो,
1: तो यानी आपको मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला, दोनों जगह।
0: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे
1: जी,
0: तो जहाँ भी हैं बस खुश रहें
1: जी। बिल्कुल साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का जो आपकी बदमाशियों से परेशान है, पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है?
0: नहीं नहीं, मेरे बेटा तो बहुत दूर है।
1: अच्छा,
0: उसको फेमस नहीं होना है। वो बिल्कुल ही अलग सोचता है
1: जी।
0: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की हैं
1: जी,
0: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने
1: जी,
0: अनुपम जी ने,
1: बहुत बढ़िया।
0: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
1: हाँ, तो उस समय वो चल,
0: फिर वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
1: मतलब तो, उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता?
0: नहीं, मैं करती भी नहीं,
1: क्योंकि मेहनत करो अपनी,
0: अपनी मेहनत करो,
1: ये बहुत अच्छी बात है।
0: क्योंकि मैंने अपने लिए कभी किसी को बोला नहीं, तो बच्चे के लिए क्या बोलूंगी
1: जी। लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है तो क्या आप करेंगी?
0: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
1: अच्छा
0: हाँ, तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना ये सुपर 30,
1: जी
0: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई, अच्छा तो बोले 100%,
1: हाँ
0: अब देखते हैं क्या होता
1: जी बिल्कुल होगा,
0: है
1: आपने कह दिया, सोच लिया, और
0: हाँ
1: विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं, ऐसा
0: हाँ ऐसा
1: हम मान
0: है,
1: के चलते हैं।
0: चलिए
1: बिल्कुल, ये
0: ठीक
1: जगह
0: है।
1: बड़ी
0: हाँ
1: बड़े पवित्र लोग यहाँ पर
0: हाँ
1: आए हैं। हाँ, आप जानते हैं कि यहाँ पर अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ
0: हाँ
1: रहे थे तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है
0: अच्छी
1: यहाँ
0: होती
1: की।
0: है। हाँ लेकिन एक चीज़ बता रही हूँ मैं
1: जी
0: कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते हैं ना, बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई और ट्रॉमास हुए हैं लाइफ के, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ।
1: ऊर्जा सकारात्मक
0: हाँ
1: है।
0: वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना या अपने पे तरस खा के रहना, क्योंकि आप सबको सब होता है मुझे और में है, या मुझे फ़ोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं जीऊँ या मर जाऊँ।
1: अरे
0: हाँ मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीज़ हुई कि मुझे
1: समस्या
0: ऐसा
1: इतनी
0: लगा
1: गंभीर
0: कि
1: है।
0: मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे, क्या मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं। और
1: क्या
0: फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था,
1: बात है।
0: और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं, खुश दिखूं, खुश बोलूं, और एटमॉस्फेयर अपने आप ठीक होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
1: बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस
0: थैंक यू।
1: अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें, हमारा एक गाना जो है, तो क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई हैं तो कुछ गाने हम भी
0: मैं
1: सुन
0: एक
1: लें।
0: कोशिश करती हूँ, चलिए मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफ़ी साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ।
1: आह
0: वो मतलब मेरे लिए भगवान भी हैं, सब कुछ है।
1: जी
0: मुझे लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज़ से सीखा है,
1: जी
0: उनका गाना गा देती हूँ।
1: जी

पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव जुल्फ के, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव जुल्फ की,

0: और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो कि उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं।
0: जी
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम
0: ध्यान
1: ये
0: होता
1: ख्याल
0: है।
1: होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए,
0: और बचता कभी
1: बचता
0: नहीं।
1: भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती माएं।
0: जी
1: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई,
0: जी
1: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि आप
0: हाँ
1: सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन
0: हाँ
1: उसको एहसास नहीं है।
0: हाँ
1: तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने। पहनने से मुझे याद आया, मैंने ब्रांड भी शुरू किया है,
0: अच्छा
1: हाँ, एक कच्चे धागे करके, और
0: अच्छा
1: साड़ियाँ वीव्स वगैरह। मैं चाहती हूँ सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है, ये
0: जी
1: ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी ये पहेली,
0: जी
1: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की। बहुत
0: अच्छा
1: सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है,
0: अरे वाह
1: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो
0: क्या बात
1: मैं
0: है।
1: चाहती हूँ कि ये सब देखें,
0: फिल्म है कैसी है पहेली,
1: कैसी है पहेली।
0: जरूर से हम
1: हाँ
0: सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है।
1: हाँ
0: और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आएं, आप वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी।
1: हाँ
0: सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
1: अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है। विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
0: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा
1: अच्छा
0: लगता है
1: लगा,
0: विविध भारती में जब आप
1: बिल्कुल,
0: आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है, तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर।

0: 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, यह अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाना है। श्री DK कुमार शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से चुने जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। महीने भर चलने वाली ये प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका की सेना उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेग्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय संचालन समिति NSC ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण निवेश योजना SIPO को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के तहत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये मंजूरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित तीसरी NSC बैठक के दौरान दी गई।

0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाय और किम वॉन हो को 21-19, 21-18 से हराया। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में आज भारतीय जोड़ी को जापान की साइका होबारा और युइची सिमोगामी ने हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: नमस्कार श्रोता मित्रों, एफएम बेंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नू आ दमण केंद्र छे।
2: स्वस्थ भारत का सपना अब होगा साकार, हर परिवार को मिलेगा इलाज का अधिकार।
3: आयुष्मान भारत योजना, सबका साथ सबका विकास, हर घर में खुशहाली आए, स्वास्थ्य बने विश्वास।
2: अब चिंता छोड़िए इलाज की, सरकार है आपके साथ। मुफ्त इलाज की सुविधा पाएं, बस कराएं पंजीकरण आज।
3: हर परिवार को स्वास्थ्य का अधिकार, आयुष्मान भारत सबका आधार।
2: जल्दी करें, अंतिम तिथि 31 मई 2026। अधिक जानकारी के लिए डायल करें 104।
3: आयुष्मान भारत, स्वस्थ जीवन सुरक्षित भविष्य।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: दादरा नगर हवेली और दमन दीव के विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर।
1: दमन स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 2026-27 के लिए डिग्री इंजीनियरिंग में प्रवेश शुरू।
0: डिग्री इंजीनियरिंग में बीई, बीटेक, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और बायोमेडिकल में प्रवेश ले सकते हैं।
1: प्रवेश की अंतिम दिनांक 13 जून 2026। ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट है www.dhtednhdd.in।
0: हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन विभाग दानह और दमन दीव द्वारा जारी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: मित्रों, हवे सांभळीए कारवा फिल्मनुं गीत मोहम्मद रफी अने लता मंगेशकरना स्वरमां।

0: दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। हवा महल के अंतर्गत श्रृंखला सुनो कहानी में आज आपको सुनाता हूं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी प्रेम का मूल्य। बृहस्पति छोटे देवताओं का गुरु था। उसने अपने बेटे कच्छ को संसार में भेजा कि शंकराचार्य से अमर जीवन का रहस्य मालूम करे। कच्छ शिक्षा प्राप्त करके स्वर्गलोक को जाने के लिए तैयार था। उस समय वह अपने गुरु की पुत्री देवयानी से विदा लेने के लिए आया। कच्छ ने कहा, देवयानी, मैं विदा लेने आया हूं। तुम्हारे पिता के चरण कमलों में मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है, कृपा कर मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दो। देवयानी ने कहा, तुम्हारी कामना पूर्ण हुई। जीवन के अमृतत्व का वो रहस्य तुम्हें ज्ञात हो चुका है जिसकी देवताओं को सर्वदा इच्छा रही है। किंतु तनिक विचार तो करो, क्या कोई और ऐसी वस्तु शेष नहीं जिसकी तुम इच्छा कर सको? कच्छ ने कहा, कोई नहीं। देवयानी बोली, बिल्कुल नहीं। तनिक अपने हृदय को टटोलो और देखो, संभवतः कोई छोटी बड़ी इच्छा कहीं दबी पड़ी हो। कच्छ ने फिर कहा, मेरे उषाकालीन जीवन का सूर्य अब ठीक प्रकाश पर आ गया है। उसके प्रकाश से तारों का प्रकाश मध्यम पड़ चुका है। मुझे अब वह रहस्य ज्ञात हो गया है जो जीवन का अमृतत्व है। देवयानी ने कहा, तब तो संपूर्ण संसार में तुमसे अधिक कोई भी व्यक्ति प्रसन्न न होगा। खेद है कि आज पहली बार मैं यह अनुभव कर रही हूं कि एक अपरिचित देश में विश्राम करना तुम्हारे लिए कितना कष्टप्रद था। यद्यपि यह सत्य है कि उत्तम से उत्तम वस्तु जो हमारे मस्तिष्क में थी तुमको भेंट कर दी गई है, इसका तनिक भी विचार न करो और हर्ष सहित मुझे जाने की आज्ञा दो। कच्छ ने कहा, देवयानी ने कहा, तुम्हारे लिए इस वन को छोड़ना बहुत सरल है। यह वही वन है जिसने इतने वर्षों तक तुम्हें अपनी छाया में रखा, तुम्हें लोरियां दे देकर थपथपाता रहा। तुम्हें अनुभव नहीं होता कि आज वायु किस प्रकार क्रंदन कर रही है? देखो देखो, वृक्षों की हिलती हुई छाया को देखो, उनके कोमल पल्लवों को निहारो। वे वायु में घूम नहीं रहे बल्कि किसी खोई हुई आशा की भांति भटके भटके फिर रहे हैं। एक तुम हो कि तुम्हारे होष्ठों पर हंसी खेल रही है, प्रसन्नता के साथ तुम विदा हो रहे हो। कच्छ ने कहा, मैं इस वन को किसी प्रकार मातृभूमि से कम नहीं समझता, क्योंकि यहां ही मैं वास्तव में आरंभ से जन्मा हूं। इसके प्रति मेरा स्नेह कभी कम ना होगा। सच कहता हूं देवयानी, कभी कम ना होगा। देवयानी ने कहा, वह देखो देखो, सामने बड़ का वृक्ष है जिसने दिन के घोर ताप में, जबकि तुमने पशुओं को हरियाली में चरने के लिए छोड़ दिया था, तुम पर प्रेम से छाया की थी। कच्छ ने कहा, ए वन के स्वामी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। जब और विद्यार्थी यहां शिक्षा प्राप्ति हेतु आए और शहद की मक्खियों की भनभनाहट और पत्तों की सरसराहट के साथ साथ तेरी छाया में बैठकर अपना पाठ दोहराएं, तो मुझे भी स्मरण रखना। देवयानी ने कहा, और हां, तनिक वनमती का भी तो ध्यान करो, जिसके निर्मल और तीव्र प्रवाह का जल प्रेम संगीत की एक लहर के समान है। कच्छ बोला, आह, उसको बिल्कुल नहीं भूल सकता, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। देवयानी बोली, किंतु प्रिय सखा, तुम्हें स्मरण कराना चाहती हूं कि तुम्हारा और भी कोई साथी था जिसने बेहद प्रयत्न किया कि तुम इस निर्धनता के दुख से भरे जीवन के प्रभाव से प्रभावित ना हो। ये दूसरी बात है कि प्रयत्न व्यर्थ हुआ। उसकी स्मृति तो जीवन का एक अंग बन चुकी है देवयानी। देवयानी ने फिर कहा, मुझे वे दिन स्मरण है जब तुम पहली बार यहां आए थे। उस समय तुम्हारी आयु किशोर अवस्था से कुछ ही अधिक थी। तुम्हारे नेत्र मुस्कुरा रहे थे। तुम उस समय उधर वहां वाटिका की बाढ़ के समीप खड़े थे। हाँ, उस समय तुम्हारे शरीर पर श्वेत वस्त्र थे। हाँ, ऐसा दिखाई देता था जैसे उषा ने अपने प्रकाश में स्नान किया है। तुम्हें संभवतः स्मरण होगा, मैंने कहा था यदि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। देवयानी ने कहा, स्मरण क्यों नहीं है? मैंने आश्चर्य से तुमसे पूछा था कि तुम कौन हो, और तुमने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया था कि मैं इंद्र की सभा के प्रसिद्ध गुरु बृहस्पति का सुपुत्र हूं। फिर तुमने बताया कि तुम मेरे पिता से वो रहस्य मालूम करना चाहते हो जिससे मुर्दे जीवित हो सकते हैं। कच्छ ने कहा, मुझे संदेह था कि संभव है तुम्हारे पिता मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार न करें। देवानी फिर बोली, किंतु जब मैंने तुम्हारी स्वीकृति के लिए समर्थन किया तो वो इस विनती को अस्वीकार न कर सके। उनको अपनी पुत्री से इतना अधिक स्नेह है कि वो उसकी बात टाल ही नहीं सकते। कच्छ बोला, और जब मैं 3 बार विपक्षियों के हाथों मारा गया तो तुम्ही ने अपने पिता को बाध्य किया था कि मुझे दोबारा जीवित करें। मैं इस उपकार को बिल्कुल नहीं विस्मृत कर सकता। देवयानी बोली, उपकार? उपकार? यदि तुम उसको विस्मृत कर दोगे तो मुझे बिल्कुल दुख ना होगा। क्या तुम्हारी स्मृति केवल लाभ पर ही दृष्टि रखती है? यदि यही बात है तो उसका विस्मृत हो जाना ही अच्छा है। कच्छ ने कहा, बहुत सी वस्तुएं हैं जो शब्दों द्वारा प्रकट नहीं हो सकती। हाँ, मैं जानती हूं, देवयानी बोली, मेरे प्रेम से तुम्हारे हृदय का एक एक अणु छिद चुका है, और यही कारण है कि मैं बिना संकोच के इस सत्य को प्रकट कर रही हूं कि तुम्हारी सुरक्षा और कम बोलना मुझे पसंद नहीं। तुम्हें मुझसे अलग होना अच्छा नहीं, यहीं विश्राम करो। कोई ख्याति ही हर्ष का साधन नहीं है। अब तुम मुझको छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारा रहस्य मुझ पर खुल चुका है। नहीं नहीं देवयानी, नहीं, ऐसा ना कहो। देवयानी ने कहा, क्या कहा? नहीं, मुझसे क्यों झूठ बोलते हो? प्रेम की दृष्टि छिपी नहीं रहती। प्रतिदिन तुम्हारे सिर के तनिक से हिलने से, तुम्हारे हाथों के कंपन से तुम्हारा हृदय तुम्हारी इच्छा मुझ पर प्रकट करता है। जिस प्रकार सागर अपनी तरंगों द्वारा काम करता है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय ने तुम्हारी भाव भंगिमा द्वारा मुझ तक संदेश पहुंचाया। सहसा मेरी आवाज सुनकर तुम तिलमिला उठते थे। क्या तुम समझते हो कि मुझे तुम्हारी उस दशा का अनुभव नहीं हुआ? मैं तुमको भली भांति जानती हूं, इसीलिए अब तुम सर्वदा मेरे हो। तुम्हारे देवताओं का राजा भी इस संबंध को तोड़ नहीं सकता। कच्छ ने कहा, किंतु देवयानी, तुम्हें हो क्या इतने वर्ष अपने घर और घर वालों से अलग रहकर मैंने इसीलिए परिश्रम किया था? देवयानी बोली, क्यों नहीं? क्या तुम समझते हो कि संसार में शिक्षा का मूल्य है और प्रेम का मूल्य ही नहीं? समय नष्ट मत करो, साहस से काम लो, ये प्रतिज्ञा करो। शक्ति, शिक्षा, ख्याति की प्राप्ति के लिए मनुष्य तपस्या और इंद्रियों का दमन करता है। एक स्त्री के सामने इन सब का कोई मूल्य नहीं है। कच्छ ने कहा, तुम जानती हो कि मैंने सच्चे हृदय से देवताओं से प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन के अमृतत्व का रहस्य प्राप्त करके आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। देवयानी ने कहा, परंतु क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारे नेत्रों ने पुस्तकों के अतिरिक्त और किसी वस्तु पर दृष्टि नहीं डाली? क्या तुम ये कह सकते हो कि मुझे पुष्प भेंट करने के लिए तुमने कभी अपनी पुस्तक को नहीं छोड़ा? क्या तुम्हें कभी ऐसे अवसर की खोज नहीं रही कि संध्या काल मेरी पुष्प वाटिका के पुष्पों पर जल छिड़क सको? संध्या समय जब नदी पर अंधकार का वितान तन जाता था तो मानो प्रेम अपने दुखित मन पर मौन छा जाता। तुम घास पर मेरे बराबर बैठकर मुझे अपने स्वर्गिक गीत गाकर क्यों सुनाते थे? क्या यह सब काम उन षड्यंत्रों से भरी हुई चालाकियों का एक भाग नहीं जो तुम्हारे स्वर्ग में क्षम्य है? क्या इन कृत्रिम युक्तियों से तुमने मेरे पिता को अपना न बनाना चाहा था? विदाई के समय धन्यवाद के कुछ मूल्यहीन सिक्के उस सेविका की ओर फेंकते हो जो तुम्हारे छल से छली जा चुकी है। कच्छ ने कहा, अभिमानी स्त्री, वास्तविकता को मालूम करने से क्या लाभ? यह मेरा भ्रम था कि मैंने एक विशेष भावना के वश तेरी सेवा की और मुझे उसका दंड मिल गया, किंतु अभी वो समय नहीं आया कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं कि मेरा प्रेम सत्य था या नहीं, क्योंकि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य दिखाई दे रहा है। अब चाहे तो मेरे हृदय से अग्नि की चिंगारियां निकल निकल कर संपूर्ण वायुमंडल को आच्छादित कर लें, मैं भली भांति जानता हूं कि स्वर्ग अब मेरे लिए स्वर्ग नहीं रहा। देवताओं की सेवा में यह रहस्य तुरंत ही पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, जिसको मैंने कठिन परिश्रम के पश्चात प्राप्त किया है। इससे पहले मुझे व्यक्तिगत प्रसन्नता की प्राप्ति का ध्यान तनिक भी न था। क्षमा कर देवयानी, मुझे क्षमा कर, सच्चे हृदय से क्षमा का इच्छुक हूं। इस बात को सत्य जानना कि तुझे आघात पहुंचाकर मैंने अपनी कठिनाइयों को दुगना कर लिया है। देवयानी ने कहा, क्षमा? तुमने मेरे नारी हृदय को पाषाण की भांति कठोर कर दिया है, वो ज्वालामुखी की भांति क्रोध में भबक रहा है। तुम अपने काम पर वापस जा सकते हो, किंतु मेरे लिए शेष क्या रहा? केवल स्मृति का एक कटीला बिछोना और छिपी हुई लज्जा जो सर्वदा मेरे प्रेम का उपहास करेगी। तुम एक पथिक के रूप में यहां आए धूप से बचने के लिए, मेरे वृक्षों की छाया में आश्रय लिया, अपना समय बिताया। तुमने मेरे उद्यान के संपूर्ण पुष्प तोड़कर एक माला गूंथी और जब चलने का समय आया तो तुमने धागा तोड़ दिया, पुष्पों को धूल में मिला दिया। मैं अपने दुखित हृदय से श्राप देती हूं, जो शिक्षा तुमने प्राप्त की है वो सब तुमसे विस्मृत हो जाए। दूसरे व्यक्ति तुम्हारे से यह शिक्षा प्राप्त करेंगे, किंतु जिस प्रकार तारे रात में अंधियारे से संबंध स्थापित नहीं कर पाते बल्कि अलग रहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी यह विद्या भी तुम्हारे जीवन से अलग रहेगी। व्यक्तिगत रूप में तुम्हें इससे कोई लाभ न होगा, यह केवल इसलिए कि तुमने प्रेम का अपमान किया, तुमने नहीं समझा प्रेम का मूल्य। प्रेम का मूल्य, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी ये कहानी अभी आप सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
1: सुनो कहानी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

0: डंकी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। इरशाद कामिल के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूं हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूं विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हां, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

भीड़ फिल्म का ये सोहर आप सुन रहे थे रोमी की आवाज़ में। शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था। विविध भारती से ये है कार्यक्रम चित्रलोक।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता, सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के बाकी गाने आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।

0: स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत आप सुन रहे थे। कृष्णा कुमार और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म थी वेलकम टू सज्जनपुर।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

शादी के साइड इफेक्ट्स, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे फरहान अख्तर की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया, बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओला

0: वृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरामैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरामैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डीके शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया।

उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आनंद बख्शी का लिखा गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, फिल्म थी आपकी कसम। विविध भारती से यह है कार्यक्रम आपके लिए।

0: ज्वेल थे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

रंगोली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

विविध भारती के सभी श्रोताओं को दिलीप का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर।

23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले लगभग 3,500 जिंगल्स के लिए आवाज दी। क्रिकेट विश्व कप 1999 के दौरान भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए जोश ऑफ इंडिया गीत में भी उन्होंने गाया। उन्होंने संगीत में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। केके का कहना था कि गायक का चेहरा दिखने के बजाय उसका सुना जाना ज्यादा जरूरी है।

ये गीत काफी लोकप्रिय रहा। हालांकि बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से। उनके गीतों से युवा अपने आप को रिलेट कर पाते थे, क्योंकि उनके गीतों में वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी महसूस कर पाते थे और भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते थे, जैसे कि ये गाना उन्हीं के लिए गाया गया हो।

1999 में उन्होंने अपना एक एल्बम लॉन्च किया पल, जिसका गीत यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है काफी लोकप्रिय रहा और स्कूल कॉलेज के लगभग हर फेयरवेल फंक्शंस का हिस्सा रहता था। इस गाने के बगैर कोई भी फेयरवेल फंक्शन अधूरा ही माना जाता था।

के चर्चित गानों की बात करें, शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का गाना आंखों में तेरी काफी लोकप्रिय हुए। काइट्स का जिंदगी दो पल की, जन्नत का गाना जरा सा, गैंगस्टर का गाना तू ही मेरी शब है।

को 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नामित किया गया और उन्हें बचना ए हसीनो फिल्म के गाने खुदा जाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का स्क्रीन अवार्ड मिला।

के बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे। कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर परफॉर्म भी करते थे और नेचर लवर भी थे। केके के कुछ अपने उसूल भी थे जिनसे वो समझौता नहीं करते थे। एक बार एक गाने को रिकॉर्ड करते वक्त उन्हें लगा कि गीत के बोल ठीक नहीं हैं और उनकी इस आपत्ति का सम्मान करते हुए गाने के बोल बदल दिए गए। अच्छे गायक की उनकी अपनी परिभाषा थी। के मानते थे कि अच्छा सिंगर वही है जो किसी संगीतकार के गाने को अपना बना के गा सके।

0: संगीतकार ललित पंडित ने कृष्ण कुमार कुन्नाथ के लिए अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए।
1: के को पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी बहुत प्यार करती है, बहुत ही अच्छे कलाकार होने के अलावा बहुत अच्छे दिल के इंसान थे, बहुत दोस्त थे मेरे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में लाइफ में कभी कभी और शोबिज मुकेश भट्ट जी की फिल्म में गाने गाए हैं, उन्होंने सारे मेरे जतिन ललित के भी गाने गाए हैं। उनकी आवाज में एक यूथ को अट्रैक्ट करने की एक क्षमता थी और गाने में जो सुर पकड़ने की ताकत थी उनमें बहुत थी। और सबसे बड़ी बात है जो सिंगर में लोग ढूंढते हैं और जो कुदरत की तरफ से आती है वो एक वॉइस क्वालिटी। उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही यूथफुल वॉइस क्वालिटी थी। और वॉइस क्वालिटी का ऐसा होता है कि एज से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता, वॉइस पुरानी नहीं होती आपकी, आपकी गायकी आपको मेंटेन करनी पड़ती है और वो केके में थी।

के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से कॉन्सर्ट्स का हिस्सा बने, जिसके लिए वो खास तौर से जाने जाते थे। युवा दिलों की धड़कन बने और अपने आखिरी पलों में भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वो युवाओं के साथ ही थे। 53 वर्ष की अवस्था में मंगलवार 31 मई 2022 को कोलकाता में कॉलेज के कॉन्सर्ट के बाद हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह गए।

0: श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर। आलेख और स्वर दिलीप का, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले की।
1: आज के फनकार।

शायद ये प्रोग्राम थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि खूबसूरती ऊपर वाले की देन है। हर एक इंसान के नए नक्श बनाने वाले ने अपनी ही तरह से बनाए हैं, जो उस इंसान के व्यक्तित्व की पहचान है। सिर्फ सुंदर तीखे नए नक्श ही असली खूबसूरती नहीं होते, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं।

किसी को पहली बार देखते हैं तो आपकी दो आंखें चार होती हैं सामने वाले की दो आंखों से। आंखों के लिए एक शायर ने क्या खूब कहा है, वो चीज कहते हैं फिरदौस गुमशुदा जिसको, वो चीज कहते हैं फिरदौस गुमशुदा जिसको, कभी कभी तेरी आंखों में पाई जाती है।

आंखें आईना होती हैं दिल का। खैर, आंखों के बाद प्रभावित करती है सुरीली आवाज। आवाज में वो जादू होता है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है, और यही आवाज पहचान होती है इंसान की।

जरूर ढाएगा कोई महशर, जरूर फितना बर्पा करेगा तुम्हारा अटखेलियों से चलना, झुका के गर्दन उठा के आंचल। जी हाँ, बारी है चाल की। जहाँ उठना बैठना बात करना लोगों के मन को लुभाता है, वहीं चलना भी एक अदा है। ऐसी मतवाली चाल जिसे देखकर कोई तौबा।

खूबसूरती क्या है? देखा जाए तो हर चीज का नियमानुसार होना। किसी की आंखें छोटी होती हैं या बड़ी बड़ी होती हैं, किसी के होंठ पतले हैं या मोटे, लेकिन अदाएं, जी हाँ, अदाएं तो आपके बस में हैं, क्योंकि यही अदाएं देखकर एक शायर ने ये

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: कन्हैया
1: बैठा चुप है भैया
2: मेरा भैया
3: हाँ हाँ तेरा भैया हाँ हाँ मेरा भैया
2: भैया भैया बोलो भैया
0: बोलूं क्या मैं अरे बोल कन्हैया

सुनहरे रे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये पहला जो गीत है अब्दुल्ला फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट

लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।